सुप्रभात। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के बैसाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई साल 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
3: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
4: People to people connect.
1: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स @20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष

0: ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
2: हमारे ग्रंथों में एक बड़ा सुंदर मंत्र इन शब्दों में मिलता है, उठो, जागो और जब तक ध्येय की प्राप्ति ना हो प्रयत्न करते रहो। जीवन में सफलता की यही कुंजी है। बिना सक्रियता के कुछ नहीं हो सकता। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें तो क्या मिलेगा? दुनिया उसी को प्यार करती है, उसी को मान देती है जो मेहनत करता है और मेहनत की कमाई करके खाता है। आदमी का काम प्यारा होता है, चाम नहीं। हिमालय की चोटी पर चढ़ने के अवसर कम ही आते हैं, लेकिन हाथ के काम को कुशलता से करने का मौका तो हर पल सामने रहता है। कुछ लोग जीवन की सफलता पैसे से आंकते हैं। जिसने अधिक कमाई कर ली उसके लिए माना जाता है कि वो जिंदगी में सफल रहा है। पर धन सफलता की असली कसौटी नहीं है। धन साधन है, जीवन का साध्य नहीं हो सकता। यदि पैसा ही सब कुछ होता तो बुद्ध, महावीर, गांधी जी आदि महापुरुष क्यों गरीबी का जीवन अपनाते? आदमी को निराशा तभी होती है जब वो आशा रखता है। जो काम वो करता है उसके फल में उसकी आसक्ति रहती है। गीता में कहा गया है, काम करो, फल की इच्छा मत रखो। मेहनत कभी अकारथ नहीं जाती। फलों के पेड़ों पर फल आते ही हैं, पर फलों पर हमारी इतनी निगाह रहती है कि पेड़ लगाने के आनंद को हम भूल जाते हैं। अच्छी तरह से काम करने का अपना निराला ही उल्लास होता है। कुछ लोग कहते हैं यह भी कोई जिंदगी है कि हर पल काम करते रहो। बहुत दिन जीने के लिए आराम बहुत आवश्यक है। ऐसा कहने में एक बुनियादी दोष है। हर पल काम करने का मतलब यह नहीं है कि आदमी कभी आराम ही ना करे। इसका मतलब है आदमी कर्मठ रहे, आलस्य न करे। सच बात यह है, निष्क्रिय जीवन से बढ़कर दूसरा अभिशाप नहीं है। जो लोग क्रियाशील रहते हैं वो काम करने का संतोष पाते हैं और अपनी प्रसन्नता से धरती का बोझ हल्का करते रहते हैं। इसके विपरीत जो काम से बचते हैं वो स्वयं तो परेशान होते ही हैं,

0: समाज में भी बड़ा दूषित वायुमंडल पैदा कर देते हैं। कर्म में जीवन दूसरों पर अच्छा असर डालता है। आलसी दूसरों को आलसी बनाता है। किसी ने कहा है, उठो, दिन बीता जा रहा है और तुम सपने लेते हुए पड़े हो। दूसरे लोगों ने अपने कवच धारण कर लिए हैं और रणभूमि में चले गए हैं। सेना की पंक्ति में एक खाली जगह है जो तुम्हारी राह देख रही है। हर मनुष्य को अपना कार्य करना होता है। हर आदमी के लिए ऊंचाई पर स्थान है, लेकिन वहां पहुंचता वही है जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है। हाथ पैरों में ताकत होती है, निगाह में ऊंचाई होती है और हृदय में सबके लिए प्रेम और सहानुभूति का सागर उमड़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसके ऊपर सदा निर्मल आकाश है। अगर कभी बादल घिर भी आते हैं तो वे अधिक समय तक नहीं टिकते। अपने लक्ष्य पर आंख रखकर मजबूती से बढ़ते चलना इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। वाचन स्वर थे रजनीश गुप्ता के। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। श्रोताओ, लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसकी शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

भगवान श्री राम की महिमा अपरंपार और शाश्वत है, जो धर्म, सत्य और आदर्शों के सर्वोच्च प्रतीक हैं।

इसी नाद के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

देवाधिदेव महादेव से राम अवतार की पूरी कथा सुनकर पार्वती के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु शिव की इस उक्ति ने कि यह अनुपम कथा काकभुशुंडी ने गरुड़ को सुनाई, उनके मन में सहज जिज्ञासा जगा दी। एक कौवा ऐसी भक्ति कैसे पा गया? देवाधिदेव ने तब वो कथा सुनाई कि पवित्र और पुण्य आत्मा काकभुशुंडी को यह सदगति और ऐसा दुर्लभ सुयोग और सुअवसर कैसे प्राप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायन स्वर थे अनुराधा पौडवाल और हरिहरन। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट और संदेश टू सोल्जर आप सुन सकेंगे दोपहर 4 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। शैल संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मदन सिंह के गाए जौनसारी लोकगीत। समय रहेगा सुबह 7:30 पर। सुबह 10:35 पर आप सुनिएगा लोक संगीत के कार्यक्रम में ललित कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम महिला जगत में आज आप सुनेंगे सोशल मीडिया का प्रयोग कितना सही कितना गलत विषय पर फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे शाम 5:45 पर। किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा शाम 7:00।

सुबह 8:30 पर आप सुनना न भूलिएगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे सुबह 9:00। रात्रि 7:50 पर आरएनयू देहरादून का विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 स्वास्थ्य चर्चा में आज आप सुनिएगा उच्च रक्तचाप और हृदय रोग विषय पर।

डॉक्टर चेतन शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हेमंत कुमार पाठक के गाए भजन। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 10:30 पर आपकी फरमाइश में। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में गाए गीत। कार्यक्रम सैनिकों के लिए का समय रहेगा दोपहर 2:30 पर। सुबह 9:05 पर आप सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत और दोपहर 3:02 पर आप सुनेंगे गाने नए तराने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
5: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
4: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC Bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a Uniform Civil Code Bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 43 lives in the past 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. Maximum deaths have been reported from Bhadohi district, where 15 people lost their lives. More than 1,000 people are injured and admitted to different hospitals. 10 people died in Mirzapur, 9 in Fatehpur, while 5 people died in Badayun and 4 people died in Bareilly district. The government has given 1-year extension to Director of Central Bureau of Investigation or CBI, Praveen Sood. According to an official order issued by the Department of Personnel and Training, the Appointments Committee of the Cabinet gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond the 24th of this month. US President Donald Trump arrived in Beijing last evening for a two-day summit with Chinese President Xi Jinping. Iran war, global energy crisis, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. The summit comes at a pivotal moment for global geopolitics. While expectations for major breakthroughs remain limited, the meeting is being viewed as a critical effort to stabilize relations between the world's two countries amid rising international uncertainty. In IPL cricket, Virat Kohli created history and broke several records during Royal Challengers Bengaluru's 6-wicket victory over Kolkata Knight Riders in Raipur last night. Kohli scored an unbeaten 105 runs off 60 balls, including 11 fours and 3 sixes. It was his 9th IPL century, the most by any player in the tournament's history. During his innings, Kohli also completed 14,000 T20 runs, becoming the first Indian and the fastest player ever to reach the milestone, breaking Chris Gayle's record. He also crossed 400 runs this IPL season. Today, Punjab Kings will face Mumbai Indians in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
6: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शीर्षक गीत का कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का ये गीत आशा भोंसले और अनवर के युगल स्वर में।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत, फिल्म आदमी खिलौना है से। आवाजें हैं अलका याग्निक और साथियों की।

0: इसी गीत के साथ शीर्षक गीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। प्रदेश में नए सरकारी वाहनों की खरीद में अब 50% इलेक्ट्रिकल वाहन अनिवार्य होंगे। राज्य में चारधाम यात्रा सुरक्षित शांतिपूर्वक जारी। अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अल्मोड़ा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया जन जागरूकता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इस बीच प्रदेश में नए सरकारी वाहनों की खरीद में अब 50% इलेक्ट्रिकल वाहन अनिवार्य होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कैबिनेट ने सप्ताह के एक दिन नो व्हीकल डे मनाने, सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और रूफटॉप सोलर व गोबर गैस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। एक रिपोर्ट।
3: मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार लागू करने का निर्णय लिया गया। सरकार जल्द ही नई ईवी पॉलिसी भी लाएगी और राज्य में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। बैठक में सरकारी विदेश यात्राओं को सीमित करने, होटल और ढाबों में कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा देने और मेड इन स्टेट अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने की बात भी कही गई। इसके अलावा किसानों को प्राकृतिक खेती और बायो इनपुट्स के लिए प्रशिक्षण देने तथा पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर और पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष सहायतित ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता एवं स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी क्रम में चमोली जिले के ग्राम खेती निवासी सुनीता देवी ग्रामोत्थान परियोजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता बनी है। वे आद्रबद्दी CLF से जुड़ी हुई हैं तथा जयमा भगवती ग्राम संगठन के अंतर्गत उमा समूह की सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में परियोजना के सहयोग से एक छोटी दुकान की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें 75,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्तमान में श्रीमती सुनीता प्रतिमाह लगभग 12,000 रुपए तक की आय अर्जित कर रही हैं। इस आय से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है तथा वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: प्रदेश में चार धाम यात्रा के अंतर्गत देश व विदेश से यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में अब तक 4,91,000 से ज्यादा यात्री धाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में 26,718 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में पंजाब के रोपड़ से आए श्रद्धालु दिवाकर ने बताया कि यात्रा मार्ग पर प्रशासन की टीमें हर समय सहायता के लिए उपलब्ध हैं और दर्शन बेहद सहजता से हो रहे हैं।
5: हर हर महादेव, जय श्री केदार। और मैं दिवाकर पंजाब से आया हूँ और मेरे साथ मेरा ग्रुप आया है। और कल हमने शुरू किया था केदारनाथ की यात्रा के लिए, पैदल चलना शुरू किया और बड़े प्रेम से हम यहाँ आए हैं। थोड़ा मौसम बीच में ऐसा रहा जिससे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन भगवान भोलेनाथ का नाम लेते लेते हम यहाँ पे बड़े आराम से पहुंचे और बहुत अच्छे हमारे दर्शन यहाँ पे हो गए हैं। और शासन प्रशासन का यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरफ से खाने से पीने से और स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीजें हैं सबको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। किसी प्रकार के कोई किसी को समस्या नहीं आ रही। पुलिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, जितने भी मित्र पुलिस है सबका साथ अच्छे से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल आता हूँ वैसे, पर इस साल व्यवस्थाएं कुछ ज्यादा अच्छी है।
1: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धामों और यात्रा मार्ग पर प्रशासन द्वारा सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ यातायात प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। केंद्र प्रदेश सरकार की ओर से नशा मुक्त भारत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा में पुलिस द्वारा जिले में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस लगातार सार्वजनिक स्थानों, मेडिकल कॉलेज, विद्यालयों, कॉलेजों में जाकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों व लोगों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा परिसर सभागार में 2 सत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और नशे से दूर रहकर स्वस्थ, सुरक्षित एवं सकारात्मक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक बलवंत सिंह रावत ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। आमजन के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
6: NDPS के जो मादक द्रव्य हैं उनके प्रयोग को लेकर के जनपद पुलिस द्वारा, जनपद प्रशासन द्वारा लगातार प्रहार किया जा रहा है और स्मैक हो, गांजा हो, बाकी जितने भी मादक द्रव्य होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दूसरा पक्ष जो है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो मेडिकल छात्र हैं, चाहे वो अन्य वर्ग के हैं, उन सबके बीच में जागरूकता फैलाना कि किस प्रकार हम लोग इन मादक द्रव्यों से अगर कोई ग्रसित हो गया है तो किस प्रकार उनको इस तरह की चीजें छुड़वाई जा सकती है।
1: आगामी 17 मई को चमोली जिले के देवाल में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुनित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का उद्देश्य आम जनमानस को विधिक अधिकारों एवं विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक करना है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार

0: द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही महिला अधिकार, बाल संरक्षण, निःशुल्क विधिक सहायता, साइबर अपराध, नशान्मूलन, घरेलू हिंसा, वरिष्ठ नागरिक अधिकार सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान की जाएगी, जबकि विभागीय अधिकारियों द्वारा आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। देहरादून से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में कम हुए वाहन की खबर सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से शामिल की है। इस खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, कैबिनेट बैठक में जाते समय पीएम मोदी के काफिले में सिर्फ दो वाहन। हिंदुस्तान ने लिखा, मोदी और शाह के काफिले में कटौती की। वहीं उत्तराखंड कैबिनेट की खबर को भी सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता के साथ स्थान दिया है। इस खबर पर अमर उजाला की हेडिंग है, उत्तराखंड के हर जनपद के 10 गांवों में होगी स्वैच्छिक चकबंदी, जबकि हिंदुस्तान ने लिखा, सख्ती संयम का समय शुरू। सोने चांदी के आयात के महंगा होने की खबर को सभी ने प्रकाशित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। प्रदेश में नए सरकारी वाहनों की खरीद में अब 50% इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। राज्य में चारधाम यात्रा सुरक्षित शांतिपूर्वक जारी, अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अल्मोड़ा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया जन जागरूकता अभियान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन प्रभात 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं शैल संगीत के कार्यक्रम में मदन दास के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं शैल संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुन रहे हैं मदन दास के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: मदन दास के इसी जनसारी गीत के साथ शैल संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दिन ब्रिक्स @20 इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का 4था सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
3: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
5: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के

0: दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार. नमस्कार. देहरादून के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ माधुरी दानुपुंडी. श्रोताओं, आज भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्माता और निर्देशक मृणाल सेन की जयंती है. उनका जन्म 14 मई 1923 को तत्कालीन अविभाजित भारत के फरीदपुर में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में है. मृणाल सेन ने भारतीय सिनेमा को नई सोच और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का काम किया. उनकी फिल्मों में आम आदमी की समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी कई विषय प्रमुखता से दिखाई देते थे. वे केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली फिल्में बनाते थे. उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में अगर हम उनकी प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो भुवन शोम, मृग्या, कोलकाता 71, एक दिन प्रतिदिन, अकालेर संधाने और खंडहर जैसी प्रमुख थी. और फिल्म भुवन शोम को भारतीय समानांतर सिनेमा की नई शुरुआत माना जाता है. मृणाल सेन को भारत सरकार ने पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है. उनकी फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक पुरस्कार मिले हैं. 8 साल के लंबे अंतराल के बाद 80 वर्ष की आयु में उन्होंने 2003 में अपनी नवीनतम फिल्म आमार भुवन बनाई. अपने करियर के दौरान मृणाल सेन की फिल्मों को कान, बर्लिन, वेनिस, मॉस्को, मॉन्ट्रियल, शिकागो और काहिरा सहित लगभग सभी प्रमुख फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया. 30 दिसंबर साल 2018 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. लेकिन उनकी रचनात्मक सोच और सिनेमा आज भी नई पीढ़ी के फिल्मकारों को प्रेरणा देती है. तो आज उनकी जयंती पर पूरा आकाशवाणी परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है. श्रोताओं, बातें आगे और भी होंगी. फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत.

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोतो, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। अब वक्त हुआ है एक क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों के पढ़ने का। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के हर जनपद के 10 गांवों में होगी स्वैच्छिक चकबंदी। सीबीएसई के 12वीं का परिणाम 3.19% गिरा। बेटियों

ने फिर मारी बाजी। 88.86% लड़कियां हुई पास, 82.13% रहा लड़कों का नतीजा। सोना चांदी खरीदना अब महंगा, आयात शुल्क बढ़कर 15%। अब महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में 16 पद मंजूर। सप्ताह में एक दिन होगा नो व्हीकल डे। नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में चारधाम यात्रा, अब तक 12,60,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। आज सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे सराफा कारोबारी। और अब खबर मौसम से। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर। 14 मई का दिन क्यों है खास?

तो आपको बता दें कि 1657 में मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी भोसले का जन्म पुरंदर किले में हुआ था। 1954 की बात करें तो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालंकर ने घोषणा की थी कि हाउस ऑफ द पीपल को हिंदी में लोकसभा कहा जाएगा। 1955 की बात करें तो आज के दिन यानी कि 14 मई को शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों ने वॉर्सो पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 1992 की बात करें तो आज के दिन भारत सरकार ने श्रीलंका के उग्रवादी संगठन LTTE पर प्रतिबंध लगाया था। साल 2001 की बात करें तो भारत और मलेशिया में 7 समझौते हुए थे। साल 2007 में आज के दिन यानी कि 14 मई को जापान ने अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। साल 2008 की बात करें तो आज के दिन टाइम्स NIE ने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर मार्केटिंग एसोसिएशन INMA अवार्ड जीता था। और साल 2010 की बात करें तो भारत रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते किए गए थे। तो श्रोताओं, ये तो था 14 मई का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों है खास। बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओ, आज हिंदी रंगमंच और नाटक जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर की पुण्यतिथि है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे केवल एक श्रेष्ठ नाटककार नहीं थे, बल्कि कुशल प्रशासक, शिक्षाविद और आकाशवाणी के महान अधिकारी भी थे। हिंदी रंगमंच को नई दिशा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नाटकों में कोणार्क, पहला राजा, शारदीय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके नाटकों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। सरल भाषा में प्रभावशाली संवाद और गहरी सामाजिक सोच उनकी रचनाओं की पहचान रही है।

इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, मई का महीना प्रवासी पक्षियों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस समय कई पक्षी वापसी यात्रा शुरू करते हैं। ये उनका प्रजनन काल भी होता है। पक्षी लंबी उड़ानें भरने से पहले समूह बनाते हैं और जलाशयों के आसपास ज्यादा दिखाई देते हैं। इसी कारण मई में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है ताकि लोगों को पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। भारत में प्रवासी पक्षियों का आगमन प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य माना जाता है और हर साल सर्दियों और मौसम परिवर्तन के दौरान हजारों किलोमीटर दूर से अनेक पक्षी भारत आते हैं। ये पक्षी साइबेरिया, मंगोलिया, यूरोप, चीन और मध्य एशियाई जैसे ठंडे देशों से भोजन अनुकूल मौसम और प्रजनन के लिए भारत की ओर उड़कर आते हैं। सामान्यतः इनका आगमन सितंबर से शुरू हो जाता है और नवंबर दिसंबर तक बड़ी संख्या में दिखाई देने लगते हैं और फरवरी से मई के बीच कई पक्षी वापस अपने मूल देशों की ओर लौटने लगते हैं। यदि उत्तराखंड की बात करें तो आसन बैराज जो है वो प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले अनेक विदेशी पक्षी सर्दियों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा हरिपुरा जलाशय, उधम सिंह नगर में नैनीताल लेक तथा जिम कॉर्बेट क्षेत्र में भी कई प्रवासी पक्षी दिखाई देते हैं। प्रवासी पक्षी केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते श्रोताओं, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारा फर्ज है कि उनकी सुरक्षा और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण हम सब बखूबी करें। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले और अंतिम गीत की ओर।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार देहरादून के उत्तराखंड विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में मैं योशिता पांडे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लिए चलते हैं जनपद चंपावत, जहां बीते दिनों न्याय व्यवस्था, लोक संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां देखने को मिली। एक ओर गुलजी महोत्सव और ईठा साहिब जोड़ मेले की तैयारियों ने जिले को उत्सव के रंग में रंगा, तो वहीं लोक अदालत, जनता मिलन और स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रयास भी लगातार जारी रहे। आइए शुरू करते हैं चंपावत जिले की चिट्ठी। आलेख है चंद्रबल्लभ ओली का। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में चंपावत जिला न्यायालय परिसर और ब्यहार न्यायालय टनकपुर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 74 वादों का निस्तारण करते हुए 2,43,00,000 रुपये से अधिक की राशि का सेटलमेंट किया गया। लोक अदालत में संपत्ति अधिग्रहण, मोटर वाहन, वित्तीय विवाद, पारिवारिक मामलों और बिजली पानी से जुड़े प्रकरणों का निपटारा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित और सरल न्याय उपलब्ध कराना है, ताकि आपसी सहमति से विवादों का समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया, जिससे लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। अब बात करते हैं चंपावत जिले की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े गोलचू महोत्सव की। जिला मुख्यालय के गोरलचौड़ मैदान में 10 दिवसीय गोलचू महोत्सव का शुभारंभ धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा अर्चना के साथ किया गया। महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में निकाली गई कलश यात्रा और छोलिया दल की आकर्षक प्रस्तुतियों ने माहौल को पूरी तरह लोक संस्कृति के रंग में रंग दिया। महोत्सव के दौरान खेलकूद, शैक्षिक प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्टार नाइट का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही व्यापारिक मेला और विकास प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आयोजकों का कहना है कि इस प्रकार के आयोजन स्थानीय संस्कृति को संरक्षण देने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। अब चलते हैं जिले के प्रसिद्ध गुरुद्वारा रीठा साहिब की ओर। मीठे रीठे के चमत्कार के लिए विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा रीठा साहिब ने इस वर्ष सालाना जोड़ मेला 29 से 31 मई तक आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, स्वच्छता और पेयजल व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन का कहना है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभागों को समय रहते तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। अब बात शिक्षा और नवाचार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल की। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में जिला स्तरीय कौशलम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए। उद्यमशीलता और नवाचार पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी रचनात्मकता प्रतिभा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में चयनित मॉडल अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। अब स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण मुहिम की ओर रुख करते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के तहत जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी विद्यालयों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान ने बताया कि जिले में लगभग 70,000 बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब बात प्रशासन और जनता के बीच संवाद की। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए

0: लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पेंशन जैसी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। इसी क्रम में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जनसुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो ये थी चंपावत जिले से बीते दिनों की प्रमुख गतिविधियां, उपलब्धियां और जनहित से जुड़ी खबरें। न्याय व्यवस्था से लेकर लोक संस्कृति तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, चंपावत लगातार विकास और जनसहभागिता की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। इन्हीं खबरों के साथ जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी योशिता पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संकलन था चंद्र बल्लभ ओली का।
1: अभी आप सुन रहे थे आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:05 हो रहे हैं। वक्त हुआ है सदाबहार फिल्मी गीतों का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। श्रोताओं, कुछ रिश्ते आवाज से नहीं एहसास से जुड़ते हैं, और जब अपना कोई दूर जाने लगता है तो दिल की धड़कनों में एक अजीब सी खामोशी उतर आती है और दिल कहता है कि साथिया नहीं जाना।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और जसपाल सिंह के युगल स्वर में ये खूबसूरत गीत फिल्म नदिया के पार से। फूल अपनी महक से दुनिया को सजाते हैं, फूल अपनी महक से दुनिया को सजाते हैं, नदियां बहकर जीवन का संदेश सुनाती है। इंसान भी अगर प्रेम और अपनापन बांट दे तो ये दुनिया सचमुच एक सुंदर मधुबन बन जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और यशुदास की युगल स्वर में ये खूबसूरत गीत फिल्म साजन बिना सुहागन से। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ को।

कभी कभी किसी अपने की मौजूदगी ही जिंदगी को रोशन कर देती है, जैसे अंधेरी रात में चांद उतर आए या सूने दिल में फिर से उम्मीद मुस्कुरा उठे।

0: मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो हर खुशी भी उसी से जुड़ जाती है, और जब वही एहसास दर्द बन जाए तो हर धड़कन एक अधूरी कहानी सुनाती है।
1: क्या कहा?

कुछ लोग जिंदगी में ऐसे शामिल हो जाते हैं कि उनकी मौजूदगी दुआ जैसी लगती है। हर खुशी में उनका चेहरा नजर आता है और हर मुश्किल में उनका साथ हौसला बन जाता है।

0: धनमूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। प्रदेश में नए सरकारी वाहनों की खरीद में अब 50% इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मांगों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। राज्य में चारधाम यात्रा सुरक्षित शांतिपूर्वक जारी। अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अल्मोड़ा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया जन जागरूकता अभियान। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सड़क की भूमि अतिक्रमण मामले में हरिद्वार विकास प्राधिकरण सहित अन्य विपक्षी गणों को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में नर्सिंग अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़े मामले में ओन मेरिट सिद्धांत के आधार पर होने वाली रिव्यू डीपीसी की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाई। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने नैनीताल जिला नगर क्षेत्र में सड़कों के किनारे भवन निर्माण सामग्री रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और आगामी 17 मई को चमोली जिले के देवाल में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। इस सुबह के 10:02 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। अल्जाइमर की बीमारी एक दिमागी बीमारी है। ये डिमेंशिया की सबसे आम किस्म है जो व्यक्ति को धीरे धीरे परेशानियों व मुश्किलों की तरफ से ले जाता है। ये खतरनाक बीमारी है जो ज्यादातर 50 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलती है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। कई शोध में पाया गया है कि ये बीमारी 30 या 40 साल के बाद भी शुरू हो सकती है। यहाँ तक कि आजकल ये बीमारी 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल जाती है। इस बीमारी की खोज सबसे पहले जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने 1906 में की थी, इसीलिए इस बीमारी का नाम उनके नाम से अल्जाइमर हो गया है। इस बीमारी में व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उसका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हर साल अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक हो जाए और उन्हें इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। इसे व्यक्ति वक्त रहते इसका इलाज करना शुरू कर सकता है। यह बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। यदि यह बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए तो इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। अल्जाइमर बीमारी एक दिमागी बीमारी है। इस रोग में दिमाग के कुछ ऐसे हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है जो व्यक्ति की सोचने, समझने, याद करने और फिक्र करने की क्षमता के साथ साथ जबान पर काबू करते हैं। उन हिस्सों पर यह बीमारी असर डालती है। अल्जाइमर बीमारी का सबसे सामान्य प्रकार डिमेंशिया है। ये बीमारी बुजुर्ग लोगों में ज्यादा होती है जो धीरे धीरे याद करने और सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। इस बीमारी के कारण व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कामों को वह आसानी से नहीं कर पाता। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के बारे में बहुत अध्ययन किए हैं, परंतु कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि आखिर इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। ये एक ऑटोपैथिक रोग है। आज के लम्हे प्रोग्राम में हम अल्जाइमर बीमारी के उस लक्षण और उसके कारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं आपके आरजे चेतन से। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने सामान्य कामों को भूलने लगता है। लोग समझते हैं कि ये बुढ़ापे के कारण है। भूलना एक आम बात है, परंतु हर चीज को भूल जाना ये एक खास विषय है। इसीलिए व्यक्तियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। रोजमर्रा के कामों में परेशानियां आने लगती है। व्यक्ति आसानी से अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाता। कार्य करने की क्षमता खत्म होने लगती है। व्यक्ति अपनी जीवन शैली की सामान्य बातों को भी धीरे धीरे भुलाने लगता है। किसी भी व्यक्ति का नाम या घर के आसपास की मशहूर जगह या रास्ते भी भूल जाता है। यह सब अल्जाइमर

के लक्षण हैं। अल्जाइमर की बीमारी का एक लक्षण ये भी है कि इस बीमारी में व्यक्ति की जबान लड़खड़ाने लगती है और वह किसी भी बात को सही तरीके से नहीं कह पाता है। हर बात को कहने में अटकने लगता है और अटक अटक कर भी बात करते हैं। उसकी जबान उसके काबू में नहीं रह पाती। किसी भी काम को या किसी भी मसले को हल करने की शक्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहती। बस सोचने समझने की क्षमता खो बैठते हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क सही से काम नहीं कर पाता। व्यक्ति को सामाजिक होने में परेशानी होती है। वह आसानी से लोगों से घुलमिल नहीं पाता और अकेले रहना ही पसंद करता है। अल्जाइमर के रोगियों के पर्सनैलिटी में बदलाव देखने को मिलते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। अल्जाइमर बीमारी को लेकर वैज्ञानिकों ने अनेक शोध किए हैं और इसके कारण जानने की भरपूर कोशिश की है। अल्जाइमर बीमारी के कई कारण वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा भी गए हैं। ये पर हम कुछ कारणों के बारे में बताएंगे जो अल्जाइमर बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। वंशानुगत या जेनेटिक कारण की वजह से भी अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि परिवार के किसी सदस्य में यदि अल्जाइमर की बीमारी पहले रही है तो ऐसे में आने वाली पीढ़ियों में भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है। व्यक्तियों के जीन्स दूसरी पीढ़ियों में जाकर इस बीमारी के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। अल्जाइमर बीमारी का एक कारण विटामिन B12 की कमी का भी होना भी है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है ऐसे में व्यक्ति का दिमाग कमजोर होने लगता है। इसे व्यक्ति को सामान्य दैनिक क्रियाकलापों को याद रखने में परेशानी होने लगती है। शरीर को पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। यदि सही से नींद के चक्र को पूरा न किए जाए तो ऐसे में व्यक्ति का मस्तिष्क या दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसका फलस्वरूप अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। सिर में दर्द भी अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारी का कारण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार सिर या माइग्रेन की समस्या हो तो उसे इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। शरीर पर अतिरिक्त वसा होने के कारण भी दिमाग की नसें कमजोर हो सकती है। ये अल्जाइमर का कारण बन सकता है। चिंता, तनाव या डिप्रेशन इत्यादि मस्तिष्क के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। ये दिमाग के नसों को सुखा सकते हैं। इससे अल्जाइमर की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो मैं अब मैं बताने वाला हूँ इससे भी अल्जाइमर का रोग हो सकता है। जैसे मधुमेह की बीमारी रहने के कारण, देर से सोने और जागने के कारण, पोषण से भरपूर खाना न लेने के कारण अल्जाइमर हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं इसका निवारण बताने जा रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि अल्जाइमर की बीमारी का कोई भी सटीक इलाज नहीं है। यदि यह बीमारी किसी व्यक्ति को हो गई तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनकी अच्छी देखभाल की जाए, उनका खास ख्याल किया जाए, उसके साथ साथ उन्हें अच्छे खाने पीने, पोषण से भरपूर आहार, व्यायाम, सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने का खास ख्याल रखना जरूरी है। इस तरीके से किसी हद तक उसकी उस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, परंतु बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती है। अल्जाइमर भूलने की बीमारी की सबसे आम किस्म है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 55 मिलियन लोग इस भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये बीमारी मस्तिष्क में याददाश्त को नियमित करने वाले हिस्सों को प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यक्ति का अस्तित्व, उसकी पहचान, शख्सियत, व्यवहार, उसके मिजाज, यहाँ तक कि उसके पूरे याद करने वाले हिस्से पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डिमेंशिया की बीमारी के कम से कम 100 किस्में होती है, परंतु सबसे जानी पहचानी किस्में अल्जाइमर है। स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। ये बीमारी आजकल तेजी से लोगों में फैल रही है। ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है, इसीलिए इस बीमारी से पीड़ित लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किस व्यक्ति को अल्जाइमर रोग है तो उसे तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक है। Well, dear friends, with this very useful information about Alzheimer's, we wrap up the program for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat,

09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, FM 100.5 MHz पर, यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म का नाम केदारनाथ।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो के युगल सुर में। फिल्म का नाम क्या यही प्यार है।

11 से लेकर और 9:30 बजे तक आपको हमारा रेडियो प्रसारण नहीं सुनाई दिया किसी कारणवश, इसके लिए हमें खेद है और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब तकनीकी जो है सुविधाएं वो सही हो गई हैं और इसके कारण अब आप इसे आराम से सुन सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। कविता कृष्णमूर्ति और मनहर उदास के युगल स्वर में, फिल्म का नाम सौदागर।

इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30

0: मिनट हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप यशोदा पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। यह प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। प्रदेश शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड स्थित ओसला गांव में विद्यालय भवन नहीं होने संबंधी समाचार पर गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पूरे मामले की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग उत्तरकाशी की रिपोर्ट में बताया गया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओसला में वर्तमान में 24 छात्र अध्ययनरत हैं और विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में संचालित हो रहा है। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओसला में केवल एक छात्र अध्ययनरत हैं। छात्रहित को देखते हुए दोनों विद्यालयों का संचालन प्राथमिक विद्यालय भवन से ही किया जा रहा है। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिलने के मामले में विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने लंबित वेतन शीघ्र जारी करने तथा भविष्य में ऐसी लापरवाही न होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अशासकीय विद्यालयों में वेतन भुगतान में आ रही बाधाओं को जल्द दूर कर नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मेलाधिकारी सोनिका ने हरिद्वार जिले में आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने आसन्न वर्षाकाल अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से जो प्रस्तावित कार्य निर्धारित समय में पूरा होना संभव न हो उन्हें तत्काल वापस लेने को कहा। मेलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कुंभ मेला के लिए स्वीकृत सड़कों, पुलों, घाटों, जलापूर्ति योजनाओं, विद्युतीकरण, आंतरिक मार्गों एवं चौराहों के सुधार संबंधी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था एवं सुविधा से जुड़ा महाआयोजन है, इसलिए सभी विभाग युद्धस्तर पर कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं व स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं और सुगम व्यवस्थाएं मिले। भारत के लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी की स्थापना के ऐतिहासिक 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी देहरादून द्वारा शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। दून पुस्तकालय और शोध केंद्र के सभागार में आयोजित कार्यक्रम ने भारतीय संस्कृति और संगीत की समृद्ध विरासत को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में आकाशवाणी के योगदान की सराहना करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक हेमंत बी आड़े ने कहा कि आकाशवाणी पिछले 9 दशकों से भारत की आवाज रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक इसकी भूमिका अतुलनीय है। इस अवसर पर आकाशवाणी देहरादून की कलाकार शरण्या जोशी ने ठुमरी, दादरा और चौती प्रस्तुत दी। तबले पर प्रदीप्त डे ने संगत की और हारमोनियम पर माहिर अहमद ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में पार्थो राय चौधरी ने संतूर पर राग पूरिया धनाश्री प्रस्तुत किया। आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। यह आईपीएल में उनका 9वां शतक है जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे टी20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में ललित कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: ललित कुमार के इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओ 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वर्ष फरमाइश और इस कार्यक्रम में होते हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी गीत। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। आइए आपकी पसंद का लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत और मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजे हैं। गांव लहसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्य सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। साथ ही फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप है नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा और इंद्रजीत कौर। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं नलेश्वर नगर नरवेल से पी एस ए नवान का, निर्मला और विशाल मलकापुर से नारायणी।

लेल राजकुमार खर्चे और आशीष, साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। मजनू का टीला से कमल बालूजा मधुसागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा और साथ में ही माही मलिक, ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी, आबाद खान जोहान सैफी और लीबा मलिक, साथ ही इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं। सब्जी मंडी बुलढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा जनम और साथ में मुदसर हुसैन, ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं गांव उमेड़ा निजामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, आबिद आयशा और स्नेहा बानो जैनुद्दीन। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल स्वर, फिल्म का नाम पारस मणि।

ये अगला गीत आपने फरमाइश मलिक भेजे है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी साहिल और भारती बघेल। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम रियाज, रिफाकत मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। और साथ में हैं इनके बहुत सारे मित्र डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी। और इसी गीत को सुनना चाहा है कस्बा चिल्काना सहारनपुर से जरीफ अंसारी नईम, डॉक्टर आमिर अंसारी और मुन्ना नजीम। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं जिला समस्तीपुर नरन स्टेट से लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, बेबी आराध्य और साथ में है लल्लू पंडित। और साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन वीना आशीष, राजा चैतन्य मेगा मस्किन चंडीगढ़ से है राहुल खुराना, रचिता और केशु और रिधान खुराना। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप है अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई सुच्चा सिंह पाठक। और साथ ही फरमाइश होता हमें लिखते हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, पीहरा बाजार जुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका साहू, रिया जिया, टूशी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शो और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों को। फिल्म का नाम है आप आए बहार आई।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और साथ में ही इनकी प्रोफेसर वसुधा वज्जसेन। और ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है चरडोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, जयकिशन, योगेश, वासु शाहू और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं गांव दूलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और साथ में ही ऋतिक और बलवीर सिंह। साथ ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं नेहरू चौक पैठन से हैं डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया यादव। जाला शहर से सोमनाथ यादव, गीता, ओम, सुभाष और चंदन यादव। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं आप हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, राजा चैतन्य और इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं जिला वरंगल से हैं आप हैं मोहम्मद ख्वाजा रिजाउद्दीन और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वाई द्रमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नुमान, साथ में इनके बहुत सारे मित्र। और ये फरमाइश में लिखते हैं आप हैं नाभा ज़िला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और साथ में इनका पूरा संगई परिवार। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और दीवंती। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम है मुस्कान।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी के अनुरोध पर। मैसेज हमारी श्रोता हमें लिखते हैं, आप ही उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल गीति का भानु प्रकाश। साथ ही मैसेज लिखने वाले श्रोता आप ही शांति कॉलोनी जगाधरी से सूरज मंडल और अनिल शर्मा, और इसी गीत को सुनना चाहा है आप ही हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा परवीन, वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष। साथ ही फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल ईशान और पूजा परिहार, और इसी गीत को सुनना चाहा है आप ही वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं गांधी बाग अकोला से रमेश खटनकर, वैशाली खटनकर, धनंजय सरोचो कमरावती से कमरोला ठेकेदार और नसीम बेगम। साथ ही ये फरमाइश हमें लिख भेजी है आप हैं सहारनपुर चंद्रनगर से सोनाली नारंग, सुरेश और आशु नारंग। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं आप हैं दंतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और साथ में हैं रुद्री वर्मा, और ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रीतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, दिशा दिशानी और निमिता होजा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है काले चरण।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर उनेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया, धाकट भोला वाकतरिया, परवीन रियांश, प्रतीक वाकतरिया। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सभी तैनिक की रोहिणी ऋषिकेश, जीविका और सानी का दले, पुनावले पुणे से अजय सुन बने, करिश्मा भी कविशा का सुन बने। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं सेक्टर 5 कोड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं गुन्नौर से हैं आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं काठुगोदम तेलंगाना से राजेश खन्ना, अनिता राज खन्ना, भानु राज, अमित खन्ना, रमी। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं आर्य नगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जगेल, मोरा अनिल कुमार, अजीत कुमार और साथ में ही आयुष और नंदिनी जगेल। और इसी गीत को सुनना चाहा है शास्त्री नगर बीडी शहर से किशन सबकाल, आशा सोनिया, साईराज और विशाल सबकाल। साथ ही ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं धनोरी तेलीवाला से ही निसार सलमानी।

प्रसाद बेबियाली और साथ में आयान बाबू और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश मलिक भेजी है। मोहल्ला हलबायन कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और साथ में हैं हीना कौशल। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं बोरावकी नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा और हर्ष जेठवा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम है सरगम।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें।

0: और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: समय 11:30 हुए हैं। श्रोता सुन रहे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने ऊपरकोट मोहल्ला चौखुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बान अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं कस्बा गुन्नूर यूपी से हैं, फारूक अली खान, फेजी फरहाज, फरहीन फारिया और ताहिरा। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, पवीन शर्मा, मुनीश और राहुल शर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघु कुमार, भानुप्रिया, देवाश्री, कीर्ति भारती और साथ में अनुराग मोहन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश में लिखते हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरु शब्द सिंह, राहुल। साथ ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आपने फरमाइश में लिख भेजी है धांडी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठी, संदीप और अमूल्य बाठी। और इसी गीत को सुनना चाहा है रानीगंज बंगाल से रवि और इंद्र। और ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है शेरवानी स्कूल गंज डिंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना और आलिया अंसारी। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं रेलवे रोड गंज डिंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवार, नाजमा बेगम और साथ में इनकी भाभी है सरिता गौतम और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने आप ही मानक मऊ से ही रोजी गौर मन्ना नोरिन की परिवाजन। साथ ही फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप है मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से भाई रफल साहिब सईद भाई मंसूरी राशिद भाई असद भाई फिरोजा मुस्कान अफसर अली और साथ में ही नगमा नाज मंसूरी और इसी गीत को सुनना चाहे परिमल कासगंज से हैं आबाद खान नवील खान आरफा खान एम असलम सैफी और इनकी परिवारजन और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज अमेलिक भेजा है गांव पुटपुक्का तेलंगाना से भवानी वेंकट मास्टर मिथुन और महादेव। साथ ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आपने मैसेज लिख भेजा है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सबिता राधे राकेश रंजन राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार गुंजेश कुमार रिया रानी कुमकुम कुमारी साक्षी अच्छेलाल रॉय बुल्की वाली और साथ में फल राजा। और ये मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं सदर बाजार मारपाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान जयनारायण तरुण और प्रतीक चौहान। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना सनकसा नाजियाफिया इब्राहिम सद्दाम और साथ में इनके अदीब हसन। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जी एस नायक शोभा और समस्त डागला परिवार। देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला मीना चावला साक्षी दिनेश चोपड़ा तनुनानू राधिका रानी अंशुल गुप्ता स्मिता रानी और साथ भी इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबी रही महाराज जहाँ। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है तेरे नाम।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रमों के संबंध में अपने प्रतिक्रिया, सुझाव या आलोचना के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं कार्यक्रम में आपका पत्र मिला में, जिसके लिए पता है कार्यक्रम में आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, और साथ ही पिन कोड नंबर है 2480001। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपका पत्र मिला कार्यक्रम में अपने मैसेज लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7088000731 है, और जब भी आपका पत्र मिला के लिए आप मैसेज लिखें तो शुरू में आपका पत्र मिला अवश्य लिखें। आइए श्रोता, बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के अगले गीत की ओर। मैसेज श्रोता लिखते हैं, जिला खरगोन सनावर से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुजाई, श्री रमेश चंद्र वर्मा और साथ में इनकी परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं पंजू सराय संभल से ही छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी, और इसी गीत को सुनना चाहा है। आपने फरमाइश हमें लिख भेजी है बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से ही रमा रावत, मोताला से ही विजय सुरलकर, रतनमाला और गौरी सुरलकर, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं। आपने मैसेज हमें लिख भेजा है मॉडल टाउन करनाल से ही सुधन्युदन, संदीप गुगरानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है रोहतक से ही आप हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल तनवी और अंकित कांगड़ा, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं सीएम रोड निजामाबाद से शेख अब्दुल वली, निगार परवीन, हफ्सा अनम, समूरा नमीन और इनकी परिवारजन, और ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं गांव रजौनी महोबा से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा प्रतीक्षा पाल, विमनेश पाल, दिव्यांश बघेल और साथ में इनके परिवारजन। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, और इसी गीत को सुनना चाहा है। आपने मैसेज हमें लिख भेजा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ही छनुलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहू और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

कार्यक्रम का अगला गीत आपकी पसंद का शामिल करें, उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध आपसे कि श्रोताओं, जब आपकी पसंद के फिल्मी गीत प्रसारित हो जाते हैं, आपके नाम प्रसारित हो जाते हैं, और लेकिन उसके बावजूद आप बार बार अपनी फरमाइश के गीत के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है, बल्कि हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का मैसेज तभी भेजें जब आपका नाम कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ हो। चलिए बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के अगले गीत की ओर। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना विनती विनायक सिंह, मोहिनी मोहित सिंह और प्यारी प्यारी गोगोरानी। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप है बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंद्र वरिंद्र, कुलदीप सिंह, एकम दमन और अभिजोत। और ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, गांव वडागर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, साथ में करमजीत कौर। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, गांव खारिया ढाणी सिरसा हरियाणा से सतबीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा अर्जू, नव्या बिजानिया। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है, आप हैं जलाबाल लाबाद शामली से राशिद मंसूरी, आयान मंसूरी, जीशान मंसूरी। और ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है, गांव गालम्बाला से राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव, हरमन, साथ में इनकी परिवारजन। ये फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं, आप हैं ज्वालापुर से हैं फरीद खान, तनवीर भाई, नवेद भाई, टीटू रामदयाल, रवि काकू और साथ में इनके परिवारजन। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि, आकाश करवा और आकांक्षा। और साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है, आपने फरमाइश हमें लिख भेजी है, लाल कुर्ती रोड की कैंट से हैं राजेश शर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी, दीपाली युवान और आर के राजा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं।

शोतम, ये है व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, जिसकी इस गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वासी उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू बोनू, राहुल, लक्ष्मी, प्रियंका, सृष्टि, बनी, आयुष, शौर्य और दिलीस। साथ ही ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट रोजी पल विली से डिकेस्ट हो, ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। आप जसपुर और दूलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अर्शिफा परवीन, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं गंज डिंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, और इसी गीत को सुनना चाहा है करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांडा जी, एस रामगढ़िया। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं छत्तीसगढ़ पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, ये मैसेज हमें लिख भेजा है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोडानी, अर्चना गोडानी, प्रणय प्रसिद्धि और हीरा शेदी, और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं झारखंड सुपाईसाई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश और इनकी परिवारजन, और साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सभी आना सुरेहान। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है राज पैलेस बहुनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश में लिखते हैं तेलंगाना स्टेट करीमनगर से हैं आप हैं लक्ष्मी नारायण, विजय, अभिनय और साई किरण। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है बनफूल।

0: दुनिया गई मुझको भूल, मैं बन फूल बन का फूल मैं जहां चला।
1: इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी थी अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलना सलमा सदर हम और मोहम्मद आलम हाशमी। और ये फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं मलोट पंजाब से राजेश शर्मा, मीना योगेश मंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा था आप हैं अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले। फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता। और इसी गीत को सुनना चाहा था फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर से नासिर शेख, नाजियाना से साजिद और शाहिद। साथ ये फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं गांव पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकी पंवार, अलमास बानू पंवार और साथ में इनकी परिवारजन। श्रोतम इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। समय 12 बजने को है। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा

0: जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. A 2-day BRICS foreign ministers meeting got underway in New Delhi today. The meeting is being chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. During the meeting, the foreign ministers will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said, peace and security remain central to the global order. He said the recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. He emphasized that in this complicated and uncertain world, discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against

0: प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के संयुक्त दल ने अभियान चलाकर हटाया। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। मौसम विभाग ने आज राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश व 4000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने एवं अन्य मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए हेमंत कुमार पाठक के गाए भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार पाठक के गाए भजन। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं, अब आने सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

आप सभी सखियों को अभिज्ञा का नमस्कार, प्रणाम, आदाब। महिला जगत के खास अंक फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगी। सखियों, हम सभी की जिंदगी की रफ्तार आजकल बहुत तेज हो गई है। देखा जाए तो पढ़ाई, नौकरी, मोबाइल, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की भागदौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अक्सर अपने ही घर के बुजुर्गों को समय देना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्होंने हमें बचपन से संभाला, हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की, आज उन्हें हमारी सबसे

0: ज्यादा जरूरत है। बुजुर्गों का अकेलापन उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। अगर हम दिन में कुछ समय उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें, उनका हाल पूछें, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव होता है, उनकी सलाह परिवार को सही दिशा दे सकती है। उनके साथ समय बिताएं, जीवन के संघर्षों को जानें, यह नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। हमें यह समझना होगा सखियों कि बुजुर्गों को सिर्फ भोजन और दवा ही नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और साथ भी चाहिए। हम यह नहीं भूल सकते सखियों कि आज जो बुजुर्ग हैं कल हम भी उसी उम्र में होंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल मीडिया के प्रयोग के बारे में। जानते हैं आपके विचार, मिलते हैं आपसे और सुनते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल।
1: मैम आदाब।
0: आदाब, किससे बात हो रही है?
1: मैम मैं सानिया मलिक बात कर रही हूँ।
0: सानिया कहाँ से बात कर रही हैं?
1: गांव अगवान हेड़ा जिला सहारनपुर से।
0: चलिए अच्छी बात है, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
1: हाँ जी मैम, हम भी वैसे बस इंतजार कर रहे थे कब आपसे बातें करेंगे।
0: सानिया ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो इसके प्रयोग को आप कितना सही मानती हैं और कितना गलत? क्या लगता है इसके कुछ फायदे हैं?
1: जी मैम, फायदे भी और नुकसान भी है।
0: हाँ बताइए।
1: टाइम टू टाइम देखना चाहिए हमें फोन, ऐसा नहीं कि हर टाइम फोन में लगे रहा। और कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे हम वाहन चलाते हैं तब भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बिना जरूरी बेवजह भी फालतू इस्तेमाल करते हैं फोन का।
0: जी, खासकर जो सोशल मीडिया का एक जुनून होता है लोगों को,
1: जी मैम,
0: तो जैसे कि किसी ने मैसेज भेजा तो देखते हैं कि क्या जवाब आया है, या हमने कोई पोस्ट की है तो हम जानना चाहते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया है, तो एक तरह से वो दिमाग में वही चलता रहता है ना? मानती है ना आप
1: जी
0: भी?
1: मैम, स्टोरी भी लगा देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि देखो किस किसने देखी है हमारी वीडियो।
0: बिल्कुल, ये एक तरह से बीमारी सी हो गई है, नहीं?
1: बीमारी हो गई है जी मैम, तो इसको छोड़ना चाहिए। हम अपने काम को छोड़कर उसे देखने में लग जाते हैं।
0: बिल्कुल, मतलब हमारा आधा ध्यान तो पूरी तरह से वहीं रहता है ना?
1: जी मैम,
0: तो हमारे मन मस्तिष्क पर इसका बहुत असर होता है।
1: अगर देखनी है तो काम की चीजें देखो ना, जैसे कि देश में क्या हो रहा है खबरें देखो, या फिर घर गृहस्थी की चीज देखो। और चीज बहुत है देखने के लिए, समय की बर्बादी होती है और इससे ना हमारी भी सेहत पर असर पड़ता है। इससे होने वाले जो साइड इफेक्ट है ना उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे कि उससे होने वाले जो हानिकारक प्रभाव है हमारी सेहत पर बहुत ही असर डालते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी मैम, और रात को ना हमें फोन का डाटा पैक ऑफ करके सोना चाहिए।
0: ठीक बोला आपने। अच्छा बताइए, गीत कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: सपने तेरी चाहतों के सबके, मैम ये तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, कंगना रनावत और अजय देवगन का सॉन्ग है।
0: बहुत अच्छे गीत की फरमाइश की आपने। सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो,
4: हाँ जी नमस्ते।
3: नमस्ते, रेडियो सखी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किससे बात हो रही है?
4: मैं सोनी जी बोल रही हूँ।
3: सोनी बात कर रही हैं?
4: जी जी।
3: कहाँ से बात कर रही हैं?
4: उत्तराखंड से बोल रहे हैं, मंगलोर से।
3: क्या करती हैं आप?
4: जी बस घर गृहस्थी का काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सिलाई वलाई कर लेते हैं।
3: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए सोशल मीडिया पे कितने देर रहती हैं? फोन तो चलाती होंगी?
4: जी हाँ, बस अब छोटा फोन ही चलाते हैं अब तो हम।
3: अच्छा,
4: जो हमारे हस्बैंड है वो करते हैं बड़े फोन का इस्तेमाल।
3: अच्छा, क्या सोचते हैं कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
4: ज्यादा नहीं देखना चाहिए बच्चों को।
3: उनके लिए अच्छा है या बुरा है ये बताइए।
4: अगर ये बच्चे अच्छी बातें देखें, उसमें पढ़ाई वढ़ाई करें, देख के अच्छी चले वो अच्छा है।
3: बिल्कुल, और अगर समय की बर्बादी करें तो बिल्कुल सही नहीं है ना?
4: सही नहीं है।
3: बताइए गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
4: ये हमको सुना दीजिए, मेरे महबूब।
3: फिल्म का नाम क्या है?
4: मेरे महबूब फिल्म।
3: ठीक है, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो रेडियो सखी, किससे बात हो रही है?
2: मैं शालू बात कर रही हूँ।
1: शालू जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
2: मैं देहरादून से बंजारा वाले से बात कर रही हूँ।
1: क्या करती हैं आप?
2: फिलहाल तो अभी ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ है।
1: ये बताइए शालू, आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया का प्रयोग हम सभी करते हैं, जैसे कि आप भी जानती होंगी और आप भी करती होंगी, है ना?
2: जी
1: हाँ, तो इसका प्रयोग करना कितना सही है और कितना गलत, क्या सोचती हैं आप?
2: मेरा सोचना ये है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो।
1: जी,
2: कई चीज ऐसी होती है कि हम लोग सही यूज करते हैं, कई चीजें गलत यूज करते हैं।
1: हाँ हाँ,
2: और वो हमारे माइंड ऑफ सेटअप पे भी डिपेंड करता है और कई बार ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है अगर देखा जाए तो। तो मेरे हिसाब से एजुकेशनल बेस हो या फिर कोई नॉलेज वाला बेस हो के लिए तो सोशल मीडिया बहुत ही परफेक्ट है। आजकल हम देख ही रहे हैं, पहले जो न्यूज में दिखाया जा रहा था कि भाई यहाँ पर ये चीज हो चुका है, अब वो ओपनली सब चीजें शेयर हो रही है, तो एक तरीके से वो सही भी है पर कहीं जगह पे वो चीजें गलत भी है। चीज दिखाई जाए ये चीज जरूरी नहीं होती।
1: जी बिल्कुल सही कहा, जैसे गलत खबरें बहुत तेजी से फैल सकती हैं, है ना?
2: जी जी, एंड AI मोड होने की वजह से कई चीजों में एडिटिंग हो चुकी है, तो जो नॉर्मल पर्सन है हम लोगों की तरह वो नहीं पहचान पाते हैं कि किस वीडियो में एडिटिंग है किस में नहीं है, तो हम तो जो चीज दिखाई है वो चीज सब समझ लेते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो मतलब बेनिफिशियल हम यूज कर सकते हैं उसे बट हम करते नहीं है।
1: बिल्कुल, यानी कि फर्जी खबरें और अफवाहें सोशल मीडिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं और हमें भी नुकसान हो जाता है उससे, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल, डेली लाइफ से ज्यादा नुकसान पहुंचता है।
1: जी, तो जहाँ तक हो सके इसका इस्तेमाल सही चीजों के लिए करें। बहुत अच्छी बात कही आपने। बताइए गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
2: ये सॉन्ग बहुत अच्छा, अब लौट चले, मूवी का नाम ही यही है, अब लौट चले।
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो रेडियो सखी,
1: नमस्ते मैम जी।
0: नमस्ते। आपका नाम क्या है,
1: मैम जी, मेरा नाम मीनाक्षी है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैम जी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। आप कैसे हो
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैम जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मुझे कॉल लग गया आपके पास।
0: चलिए, हमें भी खुशी हो रही है। क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ हूँ, घर पर रहती, सिलाई का काम करती हूँ।
0: बहुत बढ़िया। बताइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं?
1: मैम जी, मैं तो इतना करती नहीं, क्योंकि मेरा सिलाई काम रहता है, पार्लर का काम रहता है।
0: अच्छा, तो जानती तो है ना, इसका उपयोग जरूर से ज्यादा हो रहा है क्योंकि बच्चे भी इसमें लगे रहते हैं और शायद बड़े भी। आपको क्या लगता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा?
1: हाँ जी, हाँ जी मैम जी। मैम जी, वैसे तो एक बच्चन को देखा जाए अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल के काम वगैरह भी आते हैं, और वैसे बच्चे फोन पे लगे रहते हैं, सुनते नहीं
0: समय तो
1: है।
0: व्यर्थ होता ही है ना उनका।
1: हाँ जी मैम जी, बस उसको ध्यान नहीं दे पाते ना बच्चे उनकी वजह से। मैम
0: बताइए
1: जी,
0: कौन से गीत की फरमाइश है?
1: मुझे सैनिक फिल्म का सुनना है मेरी सासू में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन ले लिया।
0: सैनिक फिल्म से
1: जी, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है ना मैम जी को अभी। थैंक
0: आपको बहुत बहुत बधाई हो।
1: यू मैम।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।

0: आफ्टरनून मैडम।
1: गुड आफ्टरनून, नाम बताइए अपना।
0: जी शायना परवीन।
1: कहाँ से बात कर रही हैं?
0: कुमार हेड़ा सहारनपुर। फरमाइश का गाना सुना दीजिए आप हमारा।
1: आपकी फरमाइश का गाना सुनाएंगे, पहले ये बताइए कि आजकल सभी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं,
0: जी
1: आप करती हैं?
0: जी मैडम।
1: तो ये बताइए क्या कुछ नई चीजें सीखती हैं या सिर्फ टाइम पास करती हैं?
0: नहीं मैडम, बहुत सारी जानकारी मिलती है,
1: हाँ।
0: जो हमें नहीं मालूम वो पता चलता है।
1: तो आपको क्या लगता है कि कोई सीमा तय होनी चाहिए, मतलब कोई निश्चित समय होना चाहिए कि कहीं ऐसा कि सारा दिन इसमें लगे रहते हैं?
0: मैडम टाइम से होना चाहिए, क्योंकि लेडीज के लिए तो अपने घर की बेइज्जती बहुत होती है।
1: बिल्कुल सही,
0: इधर बच्चों का है, घर का है।
1: हाँ, तो वो गलत है कि जो हर वक्त उसी में लगे रहते हैं।
0: मैम वो तो सर गलत है, लेकिन बहुत जरूरी हो गई आज के टाइम के लिए।
1: सही कहा आपने, अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो,
0: जी।
1: और सही चीजों के लिए, है ना?
0: जी
1: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन से गीत की फरमाइश है
0: मैम, आप मुगले आजम को सुना दीजिए।
1: और कौन सा गीत सुनाए आपको?
0: जब प्यार किया फिर डरना क्या, हमें भी बहुत पसंद है ये।
1: चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।
0: जी।

आज की मुलाकात बस यहीं तक। आपको बता दें सखियों, रेडियो सखी कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं तो आप हमें हर बुधवार दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच फोन कर सकती हैं। हमारा फोन नंबर है 7088001382 7088001382। कीजिए हमसे बातें और साथ ही सुनिए अपनी पसंद के गीत। कार्यक्रम का प्रसारण होगा अगले दिन गुरुवार को 12:30 से 1 बजे तक। हमें रहेगा आपकी कॉल का इंतजार। और हाँ, कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व सुझाव आप हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088001 7088001। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, निकट रिस्पनापुल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून। पिन है 2480001। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। और अब अभिज्ञा का अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब समाचार होंगे हिंदी में।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली

0: ने बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी, ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सबसे ज्यादा 5,23,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ में 3,24,000 से अधिक और गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में 2,00,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे हैं। वहीं केदारनाथ दर्शन के लिए अहमदाबाद से आए श्रद्धालु कृणाल चावला ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की सराहना की।
2: ये धरती में जैसे पांव रखते हैं ना, तो जो एक एहसास होता है वो एक अलग ही है। और बाबा के जो दर्शन, उनकी जो धजा के दर्शन हो जाते हैं ना, तो यानी आप समझो कि आप पूरा आपका जीवन का कल्याण हो गया। और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, हर जगह यात्रियों की काफी संभाल रखी जाती है। हर हर महादेव।
1: इस बीच उच्च हिमालयी क्षेत्र की यात्रा होने से प्रदेश सरकार मौसम की स्थिति पर भी पूरी नजर रखे हुए है। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मौसम प्रतिकूल होने पर हरेक श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सकें, इसके लिए स्लॉट प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है। रियल टाइम डिजिटल निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी तंत्र बनाया गया है और सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देहरादून जिले के सहसपुर और विकासनगर ब्लॉक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसानों के लिए समृद्धि का नया द्वार खोल रही है। परंपरागत खेती में सीमित उत्पादन और कम आय से जूझ रहे किसानों को अब हाइब्रिड धान बीजों के प्रयोग से बेहतर उत्पादन और अधिक आय का लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सहसपुर और विकासनगर की 20 ग्राम पंचायतों के 70 किसानों को 28 क्विंटल हाइब्रिड धान बीज वितरित किए गए। योजना के तहत 70 हेक्टेयर कृषि भूमि को परंपरागत खेती से हाइब्रिड धान उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तित किया गया, जिसके परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे। पहले किसान एक हेक्टेयर भूमि से लगभग 45 क्विंटल धान उत्पादन करते थे और उनकी औसत आय करीब 81,000 रुपए प्रति हेक्टेयर थी। हाइब्रिड बीजों के उपयोग के बाद धान की उपज बढ़कर 62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। साथ ही किसानों की आय बढ़कर लगभग 1,13,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हो गई। कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन मिलने से किसानों का उत्साह बढ़ा है और आसपास के अन्य किसान भी हाइब्रिड धान बीज अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कृषि विभाग की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
1: उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर कानून व्यवस्था और नर्सिंग अभ्यर्थियों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार लाने और नर्सिंग अभ्यर्थियों के मामले में स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप

0: निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिस पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही नर्सिंग अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लंबित मामलों में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। यह प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। बागेश्वर का विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक इस पर्यटन सीजन में ट्रैकर्स की पहली पसंद बना हुआ है। 15 अप्रैल से ट्रैकिंग के लिए खोले गए पिंडारी ट्रैक रूट पर अब तक 1106 पर्यटक पंजीकरण करा चुके हैं। लगातार बढ़ रही पर्यटकों को देखते हुए बागेश्वर वन प्रभाग ने ट्रैक रूट पर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान तेज कर दिया है। ग्लेशियर रेंज अधिकारी डॉली डोगाल ने 6 सदस्यीय टीम के साथ ट्रैक मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यटकों और स्थानीय गाइडों के सहयोग से सफाई अभियान भी चलाया गया। वन विभाग की टीम ने 0 पॉइंट से खाती तक ट्रैक रूट से करीब 25 किलोग्राम प्लास्टिक और अन्य कचरा एकत्र किया। प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्न ने कहा कि पिंडारी ट्रैक दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, इसलिए सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है।
2: जितना भी जो कचरा लेके जा रहे हैं उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट FDR जमा कराना है, और फिर वापस जब वो लेके आ रहे हैं तो उनको पूरा वापस भी कर दे रहे हैं हम लोग। तो इससे एक अवेयरनेस भी हो रहा है कि ऐसे जो हाई एल्टीट्यूड पे हिमालयन जो जोन है वहाँ पे जैसे प्लास्टिक हो गया या कचरा, वो उस इको सिस्टम को डिग्रेड करता है। तो लोग भी, पर्यटक भी एक तरह से अवेयर हो रहे हैं और इससे वर्ड ऑफ माउथ भी फैल रहा है लोगों में, वो लोग सूचना भी दे रहे हैं। तो हम लोग साथ ही साथ ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे कचरा जो हो रहा है, जिला गंगा समिति जो है उसके माध्यम से हम लोग जैसे DFO वहाँ पे सदस्य सचिव होते हैं तो वहाँ पे भी इसको हाईलाइट करके, तो इसी क्रम में हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको और सुचारू बनाया जा सकता है।
0: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अल्मोड़ा पुलिस की ओर से जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों, मेडिकल कॉलेज, विद्यालयों और महाविद्यालयों में पुलिस जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक छात्र छात्राओं और लोगों को नशे के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूक कर रही है। इसी क्रम में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक बलवंत सिंह रावत ने बताया कि अल्मोड़ा पुलिस मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जनता के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगे।
3: प्रदेश में जिस प्रकार NDPS के जो मादक द्रव्य हैं उनके प्रयोग को लेकर के जनपद पुलिस द्वारा, जनपद प्रशासन द्वारा लगातार प्रहार किया जा रहा है, और स्मैक हो, गांजा हो, आग, बाकी जितने भी मादक द्रव्य होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दूसरा पक्ष जो है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो मेडिकल छात्र हैं, चाहे वो अन्य वर्ग के हैं, उन सबके बीच में जागरूकता फैलाना कि किस प्रकार हम लोग इन मादक द्रव्यों से अगर कोई ग्रसित हो गया है तो किस प्रकार उनको इस की चीजें छुड़वाई जा सकती है, जिससे कि इस तरह की प्रवृत्तियों को रोका जा सके।
0: कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसाइटी के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर JC दुर्गापाल ने कहा कि नशे के दुष्प्रभाव से युवाओं को बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा ताकि समाज को अच्छी दिशा में ले जाएं।
4: नशा जो है ये समाज का नाश करता है, परिवार का नाश करता है और अपने ही स्वास्थ्य का नाश करता है। उसी पर गोष्ठी का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यही हमारा प्रयास है कि समाज को एक अच्छी दिशा में हम ले जाएं और समाज इस नशे से दूर रहे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। तीर्थयात्रियों की संख्या ने 12,60,000 के आंकड़े को पार किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से सहसपुर और विकास

0: विकासनगर के किसानों को मिली नई पहचान, हाइब्रिड धान बीजों के प्रयोग से बेहतर उत्पादन और अधिक आय का मिल रहा लाभ। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया और पिंडारी ट्रैक पर उमड़ रहे पर्यटक, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर वन विभाग ने चलाया स्वच्छता अभियान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। समय 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आपकी परछाइयाँ। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत था राजा मेहंदी अली खां का और संगीत मदन मोहन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं एसटी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनोहर उदास की। फिल्म का नाम है अभिमान।

ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम था आरजू। शब्द थे हजरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, लता मंगेशकर की आवाज़। फिल्म का नाम है अनपढ़। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खां और संगीत मदन मोहन का है।

श्रोताओं इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिल्म संगीत अब आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी।
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी

0: आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओ, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
1: जी।
0: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
1: जी।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
6: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे।

0: नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारु ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारु ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैले

0: मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप? और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
3: हाँ
5: दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल,

0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
1: जी
3: अच्छा,
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
4: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: इन्हें यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे।
0: अरे दुश्मन आ रहे, फायरिंग करो, फायरिंग।
2: आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना

की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: Summit in New Delhi yesterday. He also expressed confidence that the India-Africa Business Dialogue and Exhibition to be held in New Delhi from the 29th to the 31st of this month alongside the 4th India-Africa Forum Summit will be a success. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Union Home Minister Amit Shah today said India has emerged as a global leader and first responder in the field of disaster management. Mr. Shah said the country has provided global leadership in the field of disaster-resilient infrastructure. He highlighted that 48 countries are now members of the Coalition for Disaster-Resilient Infrastructure, CDRI, and are working together with India in this direction. Mr. Shah was addressing the gathering after presenting the prestigious President's Colour Award to the National Disaster Response Force, NDRF, at their 8th Battalion campus in Ghaziabad. He said for any force, receiving the President's Colour's honour is a matter of immense pride.
1: The conferment of President's honor upon National Disaster Response Forces is a matter of pride and prestigious for all of us. This recognition honors the collective values of service, courage, valor and dedication displayed by the entire force. Within a short span of less than 20 years, National Disaster Management Authority and NDRF has played a significant role in placing India on the global map in the field of disaster response and rescue operations.
0: Minister of State for Defence Sanjay Seth today described Operation Sindoor as a landmark success that demonstrated India's capability to conduct swift, coordinated operations using indigenous weapons and systems. The minister was addressing the inaugural session of the third edition of Kalam and Kavach in New Delhi.
2: Today's world is changing rapidly. The nature of warfare is evolving. Threats are no longer confined to physical borders. They now extend into cyberspace, space, information network, and emergent technologies. In such an environment, security demands not only effectiveness, but also foresight. That is why the idea of Jai, given by our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji during his address commander conference, jointness, Atmanirbharta, innovation is so important for India's future.
0: The event serves as a premier strategic platform bringing together senior policy makers, military leadership and defence industry stakeholders to deliberate on India's evolving defence transformation and indigenous capability development. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satheeshan as the new Chief Minister of Kerala. The announcement was made by Congress leaders Ajay Makan, Mukul Wasnik and Deepa Das Munshi during a press conference in New Delhi. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. UDF secured a more than two-thirds majority in the Kerala Assembly elections, but the party was unable to decide its chief ministerial face due to lobbying by different camps and protests by workers at the ground level. The BJP today hit out at the Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, over his foreign visits. Briefing media in New Delhi, BJP spokesperson Sambit Patra said, Mr. Gandhi is in public life for the last 22 years and during the period he has undertaken 54 visits. Mr. Patra alleged that the estimated amount of 60 crore rupees was spent by him personally on his foreign visits. The Tripura government has introduced a series of austerity measures to reduce expenditure and conserve fuel. In a memorandum issued yesterday, the state government directed all departments to ensure that only 50% of Group C and Group D employees attend office each day, while the remaining staff will work from home on a rotational basis. The crucial talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the US to be partners, not rivals. In his opening remarks, US President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The US President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President The U.S. President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvic Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7 seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last 8. Meanwhile, top seeded Indian men's doubles pair Sattvic and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last 8. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheeshan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvic Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
4: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
5: In strengthening cooperation against terrorism.
3: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
4: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
3: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
5: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
7: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
6: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

0: और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया तो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेंसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जब जब देश के सामने संकट आता है या मुश्किल समय होता है, तब तब हमारे सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना तिरंगे की शान बनाए रखते हैं। ऐसे ही हमारे वीर सैनिक थे हवलदार बचित्तर सिंह। बचित्तर सिंह का जन्म 10 जनवरी 1917 को पंजाब के लोपो गांव में हुआ था। वे सरदार रूर सिंह के इकलौते पुत्र थे। इन्होंने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। इनका खेलों में विशेष लगाव था और वे तैराकी और कुश्ती में बेहद ही निपुण थी, पर देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होना चाहते थे। यही कारण है कि वह 17 वर्ष की आयु में बचित्तर सिंह 10 जनवरी 1937 को सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गए। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे अफ्रीका और ग्रीस जैसे विभिन्न स्थानों पर इन्होंने अपनी बटालियन के साथ सेवा की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, दक्षिण अफ्रीका में शत्रुओं का सामना किया और यही कारण रहा कि 1947 में भारत की आज़ादी के बाद हवलदार बचित्तर सिंह एक उत्कृष्ट सैनिक के रूप में गिने जाने लगे।

0: नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है, जरूर है।
1: रंग केसर शूर

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, 15 अगस्त 1947 को आजाद

मिलने के बाद हैदराबाद में 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नाम से एक अभियान शुरू किया गया। सिख रेजिमेंट की 3री बटालियन की मुख्य टुकड़ी 2 सिख को नाल दुर्ग क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए सौंपा गया, जो राज्य की सीमा से लगभग 19 किलोमीटर दूर शोलापुर सिकंदराबाद बाग पर स्थित है। और इस प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे हवलदार बचित्य सिंह। चर्चा जारी, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

सैनिक साथियों, सुबह लगभग 4 बजे प्लाटून की बी कंपनी ने सड़क पर नाकाबंदी कर दी और जब दो वाहन उनकी चौकी की ओर आते हुए दिखाई दिए तब हवलदार बचित्र सिंह ने अपने सैनिकों को वाहनों पर गोली चलाने का आदेश दिया और दोनों ओर से भारी गोलाबारी होने लगी। लेकिन हवलदार बचित्र सिंह ने अपनी बहादुरी और नेतृत्व का परिचय देते हुए दोनों वाहनों और उनके सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया, अपनी चौकियों को सुरक्षित कर कब्जा किया और दुश्मन पर जवाबी हमला किया। और ये जब दुश्मन की ओर बढ़ रहे थे, लक्ष्य से लगभग 30 गज दूर थे, तभी उनकी जांग में गोली लगी और वे गिर पड़े। इनकी हालत गंभीर हो गई पर ये रेंगते हुए आगे बढ़े और MMG पोस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंके जिससे एक बार गोलीबारी रुक गई। बचिंद्र सिंह घायल होने के बावजूद युद्ध क्षेत्र से हटने के लिए मना कर दिया, लेकिन जवानों को हमला जारी रखने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहे।

सैनिक साथी, अंत में इसका परिणाम ये रहा कि ये लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया और हवलदार बचित्र सिंह अपनी गंभीर चोटों के कारण शहीद हो गए। हवलदार सिंह को उनकी असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए शांतिकाल में राष्ट्र का पहला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और सैनिक साथी, पंजाब में इनके नाम पर एक कॉलेज का नाम रखा गया है, साथ ही लुधियाना में एक इलाके का नाम बचित्र नगर रखा गया है। सैनिक साथियों, इनकी बहादुरी, कुशल नेतृत्व और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान को हम सलाम करते हैं।

सैनिक साथी इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए FM 100.5 पे का हर्ष पर आकाशवाणी का ये 13 दिन केंद्र है। 3 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 307 चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्टों और उद्यान विभाग के अंतर्गत नवनियुक्त प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि सेवा, संवेदनशीलता और उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहभागी बनने का अवसर है। प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। तीर्थयात्रियों की संख्या ने 12,60,000 के आंकड़े को पार किया। सबसे ज्यादा यात्री 5,30,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ अपील पर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित आवास से पैदल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनमानस को से ईंधन बचाने की अपील की। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से देहरादून जिले के सहसपुर और विकासनगर के किसानों को मिली नई पहचान। परंपरागत खेती में सीमित उत्पादन और कम आय से जूझ रहे किसानों को अब हाइब्रिड धान बीजों के प्रयोग से बेहतर उत्पादन और अधिक आय का लाभ मिल रहा है। पिथौरागढ़ जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सहायता के उद्देश्य से हेलो हेल्प टोल फ्री नंबर कल से शुरू किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सेवा के शुरू होने से सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक अब घर बैठे ही फोन से अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। बागेश्वर जिले में कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए शासन स्तर पर 31 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली। इससे सीमांत क्षेत्र के लोगों को बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। हरिद्वार जिले के पुलिस लाइन रोशनाबाद में अत्याधुनिक हेल्थ क्लब हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके बनने के बाद पुलिस जवानों और उनके परिवारों को एक ही छत के नीचे फिटनेस ट्रेनिंग, स्वास्थ्य संबंधी सुझाव और आधुनिक व्यायाम उपकरणों की सुविधा मिल सकेगी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के 13 दिन केंद्र से बोल रहे हैं। 3:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

ये स्वार्थी कैलाश खेर, सुजेंडी मेलू और साथियों की फिल्म का नाम था ए फ्लैट। शब्द थे विराग मिश्रा की और संगीत बप्पी लहरी का था। आइए आपको सुनवाते हैं कहानी नई तराने का ये अगला गीत, आवाज़ें अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीप्रदा की फिल्म का नाम टू स्टेट्स। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

ये स्वर्थीय श्रेया घोषाल हुई में श्री रेशमिया की फिल्म का नाम था आपका सुरूर। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत बद किया था हिमेश रेशमिया ने। श्रोतो आप सुन रहे गाने नई तरारी आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं समीर की शब्द रचना जिसे संगीत दिया है संजीव दर्शन ने। आवासीय हल्का याग्निक को रुदित नारायण की फिल्म का नाम है आशिक।

0: आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

संजय लीला भंसाली के संगीत रेडिएशन में आप सुन रहे थे एम तुर्रास की शब्द रचना। आवाजें थी जावेद बशीर और साथियों की, फिल्म का नाम था बाजीराव मस्तानी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, निखिल पोल और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बर्फी। गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

गीत है विषय घोषाल और दक्ष एजाज। फिल्म का नाम था भारत। गीत को संगीत दिया था विशाल शेखर ने। श्रोताओं गाने नई तरानी प्रसारित किए जा रहे हैं FM 100.5 पे का हस पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है आशिकी 2। गीत और संगीत मिथुन का है।

0: अनु मलिक के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे समीर का लिखा गीत। ये आवाज़ें थी कुमार सानू और सुनीति चौहान की और फिल्म का नाम था अजनबी।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुँच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
0: गाने नए तराने का ये अंतिम गीत आवाज़ें हैं शान उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम।

अभी आप सुन रहे थे गाने नहीं तेरानी FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल

0: आप इतनी यंग हैं और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है
0: जी
1: क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी,
0: जी
1: बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी
0: जी
1: वजह से वो रिटायर्ड शब्द है और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज़ नॉट फॉर द रैंक बट इट इज़ फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है? कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज़ है जो मुझे विरासत में मिली है।
0: जी
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूँ तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आज़ादी के लिए लड़े,
0: ओ
1: उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो
1: जी
0: भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी
1: मेरे बचपन की तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था।
0: ओ
1: सो जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का।
0: जी
1: सो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफ़ी रुझान था, काफ़ी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो उन्होंने बोला मेडिकल की तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां
0: बिल्कुल
1: से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी। इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहाँ से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का,
0: हाँ
1: लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती
0: ओह सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
1: है। सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि 3rd ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट IT कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी,

0: एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को, कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग. और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें.
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना. तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की. इसके आगे की यात्रा की बात आप से बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है.

0: प्यार दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल, ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी।
0: वाह।
1: और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स एकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल, ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा, एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है।

0: जी
1: सो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
0: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए.
1: जी
0: लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं. तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
1: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं.
0: जी
1: एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो
0: हम्म
1: डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो
0: बिल्कुल
1: उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इम्पॉर्टेंस होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा, बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है.
1: जी
0: तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पाठ खुद क्या सीखा है? मतलब आपकी नज़र में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फख्र से सब आपका नाम लेते हैं?
1: जी लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को, अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए, तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी.
0: दैट्स अमेजिंग. इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर, इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
0: जी
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरे ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है, तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज अ वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत जरूरी है कि

0: आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
1: जी, बेहतरीन। मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफ़ी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड।
1: रिपब्लिक डे परेड,
0: हाँ जी,
1: उसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिजेंट बना था और मैं उस कंटिजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ।
0: हाँ
1: और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है।
0: हाँ
1: वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो
0: ओ
1: आपको पूरे कंटिजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है।
0: पूरे 14 किलोमीटर तक।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले, और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि
0: सपना।
1: उस राजपथ पे मैं चलूँ। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज़ पे जाना चाहूँगी जहाँ मैंने बोला

0: कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: हाँ कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का,
1: हाँ
0: लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का।
1: ओ
0: पैरा
1: वाह।
0: जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती हैं?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ,
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे, और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है,
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ।
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूं।
1: ओह माय गॉड।

0: वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांसें आप सुन पा रहे हो,
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर
1: बेसिकली.
0: स्ट्रेंथ।
1: हाँ
0: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: ऑसम. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो. तो मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी.
0: जी
1: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
0: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है।
1: जी
0: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो ज़िंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो।
1: हाँ
0: लेकिन
1: बिल्कुल.
0: आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
1: बहुत सुंदर.
0: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफ़ी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज़्यादा दिन तक रहे या ज़्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं, वो एक्चुअल लाइफ है।
1: बिल्कुल. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो,
1: जी
0: ऐसे तो काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग-अलग उसके रीजंस हैं। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने मतलब मेरे मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है,
1: जी
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है. केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ.

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और CDS जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए?
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हम उनको अच्छा संदेश दें
0: जी
1: ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है।
0: ओके आई गॉट द आंसर।
1: तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूँगी फौज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं, वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना 12th पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग

0: अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, एफकैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपकी इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज, जो सामान्य ज्ञान होता है, उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्ज़ाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है।
1: जी
0: उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहाँ मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही थी,
0: जी
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी. दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं. बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं. आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए. तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए. ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी. नहीं, आप

0: के नहीं आते हैं. सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए.
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं, तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए. तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी. अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ. क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज़ वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ. मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म्ड फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है. लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है. क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क. सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस.
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है. अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज़ के लिए मना मत कीजिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज़, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं. लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापें,
1: जी,
0: और किसी भी चीज़ के लिए मना मत कीजिए. किसी भी चीज़ से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा. कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए. तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा. क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है. बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं. तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स. आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं. तो वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना.
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया. बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास.
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी. आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं. मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता. तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए. आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ.
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए. और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है. और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता. धन्यवाद.
1: थैंक यू सो मच. शुक्रिया आपका. और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स. हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का. बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का. धन्यवाद. जय हिंद.
0: जय हिंद.

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने विभागों को 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज गंगटोक में सरकारी खर्च में कटौती के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष तथा विदेश यात्रा न करने और शनिवार तथा रविवार को कार्य दिवस के रूप में बनाए

0: रखने का भी निर्देश दिया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सायंग के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर में युवा साथी सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम सायं 5:10 पर। सायं 5:45 पर पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम होगा चिट्ठी पत्री। इस कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के लोकगीत। सायं 7:00 के किसान साथी सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। आज रात्रि 8:00 स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे डॉक्टर चेतन शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत। विषय रहेगा उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। आज रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर कल 13 मई 2026 को शाम 4:00 दून पुस्तकालय सभागार में आयोजित शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर होगा प्रियंका जैना का और प्रस्तुति होगी रमेश चंद्रा की। श्रोताओं समय याद रखिएगा आज रात्रि 8:15। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत और रात्रि 10:30 पर आपकी फरमाइश। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 7:30 पर शैल संगीत कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत। प्रातः 8:30 पर सूचना परक कार्यक्रम होगा नमस्कार देहरादून। सुबह 9:00 का समय रहेगा सदाबहार फिल्मी गीतों का। श्रोता प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुनते हैं सुबह 10:02 पर। 10:35 पर लोक संगीत के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे गुड्डू राणा के गाए जौनसारी लोकगीत। सुबह 11:00 श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप फरमाइश। कल दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत में श्रोता सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए सबद। दोपहर 12:30 पर बहने सुनती हैं कार्यक्रम महिला जगत। कल इसमें बहने सुनेंगी प्राची से काव्य पाठ। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दोपहर 1:30 पर। गाने नए तराने दोपहर 3:02 पर और अपराह्न 4:02 पर श्रोता सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित ब्रिज नारायण से राग मुल्तानी में सरोद वादन। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे कल सायं 5:10 पर। सायं 5:45 पर पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत। किसान साथी कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं सायं 7:00। कल इसमें श्रोता सुनेंगे डॉक्टर मीनाक्षी जोशी से भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय रहेगा आम लीची के बागों की प्रमुख समस्या व समाधान। कल रात्रि 8:00 कथा सागर में श्रोता सुनेंगे श्रीमती कुसुम भट्ट से कहानी। 8:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में विविध कलाकारों की गायी गजलें होंगी और रात्रि 10:00 श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। श्रोता ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपके साथ सक्षम पंत। दोस्तों, जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी हार का सामना ना किया हो। कभी परीक्षा में उम्मीद के अनुसार अंक नहीं आते, कभी नौकरी नहीं मिल पाती, तो कभी मेहनत के बाद भी परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक हार हमारी पूरी जिंदगी तय कर देती है? शायद नहीं। आज का समय प्रतियोगिता का है, जहाँ पे कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी कराई जाती हैं और इसका दबाव जो है वो युवाओं पर बहुत ज़्यादा रहता है। हाल ही में देखा गया कि नीट की परीक्षा से जुड़ी जो री एग्जामिनेशन की खबरें आईं, उससे लाखों छात्रों को मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति में डाल दिया। कई छात्रों ने लंबे समय तक इसके लिए मेहनत करी थी और वो इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा तो महसूस कर ही रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये वही समय है जब हमें मजबूत खड़े रहना है और खुद को संभालना है, क्योंकि किसी भी परीक्षा का परिणाम या एक असफलता हमारे पूरे व्यक्तित्व और भविष्य को तय नहीं करती। हम अक्सर अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर हम एक बार हार जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन सच कहें तो दोस्तों, हार सिर्फ एक अनुभव है, अंत नहीं। इतिहास गवाह रहा है कि दुनिया में कई ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने असफलताओं को देखा है। किसी को कई बार रिजेक्शन मिले हैं, कोई परीक्षा में कई बार असफल हुआ है, तो किसी इंसान का जो पहला प्रयास था वो कभी सफल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मंजिल के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। दोस्तों, इसी विषय पर करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है रोचक कोहली ने और जिसे लिया गया है फिल्म बाटला हाउस से।

दोस्तों, जब हम हारते हैं ना तो हमें दो चीजें मिलती हैं, पहला अनुभव और दूसरी सीख। कई बार जीत हमें उतना नहीं सिखा पाती जितना हमें असफलता सिखा देती है। हार हमें अपनी कमियों को समझने और खुद को बेहतर बनाने का एक मौका देती है। अगर किसी परीक्षा में हमारा मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं या हम उसके काबिल नहीं हैं। हो सकता है कि जिंदगी हमें किसी बेहतर चीज के लिए रास्ता दिखा रही हो। आज के युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असफलता के समय अपने परिवार, दोस्तों या फिर शिक्षकों से बात करें। अपने मन में किसी भी बात को दबाकर ना रखें। आपके मन में जो भी विचार आएँ आप इन लोगों के सामने रख सकते हैं और ये आपको मदद ही करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हारना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जिंदगी नहीं है। अगर आपका समय कठिन है तो यकीन रखिए कि ये समय भी गुजर ही जाएगा। ज़रूरी है बस खुद पे भरोसा रखना और दोबारा कोशिश करते रहने का साहस जुटाए रखना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं ये गीत जिसे लिया गया है फिल्म काई पोचे से और जिसे गाया है मोहन कनन और अमित त्रिवेदी ने।

दोस्तों, हम युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हर गुरुवार आप सभी के लिए लेकर आते हैं रोजगार समाचार, जो रखते हैं आपको अपडेटेड सभी रोजगार अवसरों के बारे में। आइए सुनते हैं आज के रोजगार समाचार। भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी सहित लगभग 17,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, 10वीं पास, ITI या फिर संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा मांगी गई है। इसकी आयु सीमा 18 से लेकर 33 वर्ष रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में 9,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके लिए योग्यता 10वीं एवं 12वीं पास मांगी गई है। आयु सीमा 18 से लेकर 27 वर्ष रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई 2026 है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एनालिस्ट और अन्य पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। योग्यता स्नातक या फिर संबंधित क्षेत्र में डिग्री है। आयु सीमा 21 से लेकर 35 वर्ष तक रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई 2026 है। आवेदन SBI करियर पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। IAS, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है। आयु सीमा 21 से लेकर 32 वर्ष तक है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जून 2026 रखी गई है। आवेदन UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 900 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। योग्यता 10वीं पास, ITI और डिप्लोमा मांगी गई है। आयु सीमा 18 से लेकर 27 वर्ष है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 रखी गई है। आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वाहन चालक व परिचालक के लिए कुल 72 पदों की भर्ती निकाली गई है। योग्यता 8वीं पास तथा कम से कम 3 वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस मांगी गई है। आयु सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई 2026 है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है शलमाली ने और जिसे लिया गया है फिल्म इश्कज़ादे से।

दोस्तों, आज का दौर डिजिटल हो चुका है। सोशल मीडिया खोलते ही हमें तरह तरह के नए ऑनलाइन कोर्सेज के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। कोई कहता है कि सिर्फ 30 दिन में लाखों कमाइए, तो कोई ये दावा करता है कि ये कोर्स आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अब सीखना तो अच्छी बात है दोस्तों, नई स्किल सीखनी ज़रूरी भी है आज के समय में, लेकिन क्या हर एक ऑनलाइन कोर्स सच में उतना फ़ायदेमंद होता है जितना उसे इंटरनेट पर दिखाया जाता है? शायद नहीं। आज कई युवा सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और फ्लैशी एडवर्टीजमेंट्स देखकर ही कोर्सेज खरीद लेते हैं, बिना ये सोचे कि क्या उस कोर्स की कोई रेलेवेंस है भी उनकी लाइफ में या नहीं। कई बार लोग ट्रेंड देखकर कोर्सेज खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में ना तो वो कोर्स पूरा कर पाते हैं और ना वो किसी उपयोग का रहता है उनकी ज़िंदगी में। दोस्तों, किसी भी कोर्स को अगर आप खरीदने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद के साथ बैठिए शांति से और पूछिए खुद से, क्या ये स्किल्स सच में मेरे करियर, इंटरेस्ट या फिर फ्यूचर गोल्स से जुड़ी हुई है? सिर्फ इसलिए कोई कोर्स मत ले लीजिए कि बाकी लोग खरीद रहे हैं, या फिर इंटरनेट पर वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है या उसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हर चीज़ जो वायरल होती है, ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों वो आपके लिए यूज़फुल भी हो। एक और ज़रूरी बात कि कोर्स खरीदने से पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें अच्छी तरीके से, जैसे उसका सिलेबस क्या है, ट्रेनर कौन है, और रिव्यूज़ जो आप देखते हैं वेबसाइट्स पर, क्या वो प्रमोशनल हैं या फिर जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, क्या फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इंटरनेट पर यूट्यूब, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म और कई एजुकेशन वेबसाइट्स पर मुफ्त में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसीलिए हर चीज़ के लिए तुरंत पैसा खर्च कर देना समझदारी नहीं है। और दोस्तों, एक और बात याद रखिए, सक्सेस सिर्फ कोर्स खरीदने से नहीं आती है, बल्कि उस कोर्स को लगातार सीख कर अपनी स्किल्स को बेहतर बनाकर और

प्रैक्टिस करते रहने से आती है। कई बार लोग मोटिवेशन में आकर एक साथ ढेर सारे कोर्सेज ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो सिर्फ सर्टिफिकेट मात्र बनकर रह जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करिए। अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए जिस भी कोर्स को आप कर रहे हो। इंटरनेट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है दोस्तों। ये आपको सही दिशा भी दे सकता है और कभी कभी कन्फ्यूज़ भी कर सकता है। इसीलिए कोई भी डिसीजन किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ना लें, बल्कि खुद सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि सही कोर्स वही है जो आपके सपनों और ज़रूरतों के हिसाब से सही हो। आइए सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, लिया गया है फिल्म हैदर से।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी आवाज जो ना दिखाई देती है और ना आपके सामने होती है, फिर भी लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है, यही ताकत है रेडियो की। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी संस्था के बारे में जिसने दशकों से भारत की आवाज़ बनकर लोगों को जोड़े रखा है, आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्षों की। दोस्तों, आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा मात्र नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक धरोहर है। इसकी शुरुआत ऐसे समय में हुई जब देश में संचार के साधन बहुत ही सीमित थे। रेडियो ने गांव-गांव तक खबरें, संगीत, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का काम किया। कई पीढ़ियां तो ऐसी भी हैं जिनकी सुबह आकाशवाणी की समाचार की धुन से शुरू होती है और रात किसी मधुर गीत या फिर कार्यक्रम के साथ समाप्त होती थी। आकाशवाणी ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि देश को जागरूक बनाने में भी अपनी भूमिका निभाई। चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो, युद्ध के समय महत्वपूर्ण जानकारी देना हो, खेती किसानी से जुड़े कार्यक्रम रहे हों, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी रही हो, आकाशवाणी हमेशा लोगों तक भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने का माध्यम बना रहा। दोस्तों, समय के साथ तकनीक भी बदलती गई, टेलीविजन आए, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, लेकिन रेडियो की आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में वही अपनापन रखती है। आज आकाशवाणी FM, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से नई पीढ़ी के साथ सीधे जुड़ने का काम कर रहा है। युवाओं के लिए युववाणी जैसे कार्यक्रम लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। साथ ही विशेष प्रसारण भी किए जाते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में, जिससे आकाशवाणी सभी लोगों के बीच में रेलेवेंट बना रहा है। और शायद यही वजह है कि 90 वर्ष पूरे करने के बाद भी आकाशवाणी सिर्फ यादों का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, रेडियो की खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ आवाज़ नहीं पहुंचाता, बल्कि भावनाएं भी पहुंचाता है। जब कोई उद्घोषक बोलता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई घर का ही व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा हो। आज के तेज डिजिटल दौर में आकाशवाणी हमें ये एहसास कराता है कि सादगी और सच्ची आवाज़ की ताकत भी कम नहीं होती। तो आइए आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस सफ़र को सलाम करें, उस सफ़र को जिसने देश को जोड़ा, लोगों को जागरूक किया और अनगिनत यादों को आवाज़ में समेटा। क्योंकि माध्यम बदल सकता है दोस्तों, लेकिन आवाज़ों से जुड़ी ये यादें कभी पुरानी नहीं हो सकती। चलिए सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है मिली नायर और अमित त्रिवेदी ने और जिसे लिया गया है फिल्म काई पोचे से।

तो दोस्तों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। हाँ, मगर जाने से पहले आप हमको ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आप पत्र के द्वारा अपने संदेश और सुझाव भेज सकते हैं, जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युववाणी, द्वारा निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, और हमारा पिन कोड है 2480001। इसके साथ ही दोस्तों, आप व्हाट्सएप पर भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-0000731। साथ ही दोस्तों, आप ईमेल द्वारा भी हम तक अपने संदेश और सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। इसी के साथ आप मुझे यानी सक्षम पंत को दीजिए इजाज़त। आपसे

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सायं के 5:45 हुए हैं। आप श्रोता सुने पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन वाला सभी श्रोताओं थे सिमन्या प्रणाम पहला। श्रोताओं मिछो आप दगड़ी आप है रेडियो दगड़िया रुचि रावत और उम्मीद करो छो कि आप लोग स्वस्थ वाला और आप खूब ध्यान रखना वाला किले कि हम भी भाई आप ध्यान रखना चाहें स्वस्थ चाहें। अब आप बुना वाला कि आज रुचि इनके लिए बुनी वाली चिट्ठी वाली भाषा में तो भाई आप सभी जन दें कि आज भी प्यार च और आज जो कार्यक्रम होंद वो होंद चिट्ठी पत्री को है ना। तो आप जो भी हम तक चिट्ठी पत्री भिजी रह देना वो हम आज का कार्यक्रम में शामिल कला जो कि हम आप तक घड़े कमी सुनौला। श्रोताओं वहाँ दगड़ हम आप थे सुनौला गीत और कुछ रंत रह बार जो कि बहुत जरूरी भी हो देना। श्रोताओं पहले आज हम बात कर दें एक इन विषय की जो हर घर हर पीढ़ी और हर दिल से जुड़ी हो यू विषय च दद्दी नन्नी यानी बुजुर्गों की सीख और आज की टेक्नोलॉजी की। श्रोताओं तकनीक ने हमारी जिंदगी थे आसान बड़े आली लेकिन कभी हम उन पुरानी सीखों से दूर तो नहीं होना छा जौन रिश्तों और संस्कारों थे मजबूत बने छा। श्रोताओं पहले का समय माँ दद्दी और नन्नी सिर्फ कहानी ही नहीं सुना दी छा बल्कि जीवन जीणों को तरीका भी सिखा दी छा। वो बोल दी छा कि जल्दी से आवा और जल्दी उठा बड़ों को सम्मान कारा और घरों को खाणु अच्छू होंद और घर बटे बाहर जान से पहले पुट को भोरी के खाणु खे के जावा किले की उनकी बात अनुभव से बुरी होंदी छा। व्यखुनी होंदी सहरू परिवार एक दगड़ी बैठी की खूब छी बात और हंसी खेली कर दा छा लेकिन आज हम कहका हतमा मोबाइल च एक ही भितरम बैठे हैं लोग भी एक दूसरे से कम और स्क्रीन माँ ज़्यादा जुड़िया रहें। आज की टेक्नोलॉजी ने हमते बहुत कुछ दिया ली जन ऑनलाइन पढ़ाई तुरंत जानकारी दूर बैठे हैं लुखों से वीडियो कॉल ये सब तकनीकी ही देंज लेकिन यहाँ का दगड़े दगड़ी ही बच्चों को बाहर खिलण कम हो गया परिवार का दगड़ी समय बिताण भी कम होनो च। श्रोताओं हमारी बुजुर्ग हमारी दद्दी नन्नी घरेलू नुस्खों से छुट्टी छुट्टी बीमारी ठीक कर दिन छा और आज हम हर छुट्टी बात है कि तुरंत इंटरनेट में सर्च करना छा। पहले लोग रिश्तों थे समय दीन छा अब ज़्यादा समय नोटिफिकेशन हम देना छिन लेकिन यहाँ को मतलब यू नहीं चाह कि टेक्नोलॉजी गलत हम थे जरूरत चाह तो सिर्फ संतुलन की बुलोना मतलब यो चाह कि अगर हम दद्दी नन्नी की सीख है आधुनिक तकनीक का दगड़ी जोड़ दियोला तो जीवन और भी बेहतर बन सकत किले की तकनीक हमते अग्नि बढ़ांद और संस्कार हमते जमीन से जोड़ के रख दिन तो आवा मोबाइल भी चलावा लेकिन अपना परिवार का दगड़ बैठ के कुछ समय बितावा इंटरनेट से भी सीखा लेकिन अपना बुजुर्गों की बातों तह भी दिल से अपनावा। श्रोताओं कार्यक्रम में अच्छी बात हम उन खूब लगे ना अब इन कर दें कार्यक्रम थे आगने बढ़ने और आप थे सुन दिया एक सुंदर सी गीत जी हम स्वर दियूँ चाह जितेंद्र पंवार और मीना कुमोलो को।

0: अभियान।
1: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत। मानस

0: स्वप्न मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, गीत और रैबारों का बाद एकदम फिर से कार्यक्रम में आप सभी स्वागत। श्रोताओं, आप इंतजार की घड़ी तय एक में विराम दिया और सुन दिया आज को चिट्ठी पत्री को अंक।

0: चिट्ठी पत्रिका आज का अंकमा सभी सुनदारों का स्वागत मिछो विनय ध्यानी और म्यार दगड़
1: दगड़ अम्मी छो आप दगड़ रुचि रावत मेतर पांबड़े आप सभी तो है सेवा सोले
0: सेवा सोने द्विधा कह रहे आज अपन है ना कार्यक्रम में
1: जी
0: ठीक कोई बात नहीं सेवा सोने ज्यादा दाय हो जाए भलो छे कुछ ना कुछ प्रसाद मिल ही जाए
1: हाँ
0: है ना।
1: जी
0: लेकिन आज हम जय प्रसाद का खातिर बैठे छुआ वो छे ना हमारा भाई बंधु की चिट्ठी पत्री
1: जी
0: और चिट्ठी पत्रियों की लगातार जो संख्या छे वे माँ कमी आनी च तो भाई हम कखे न कखे मनना छुआ कि हो सकत हमारी कमी हो तो ई बात तो स्वीकार कर दा। आज एक चिट्ठी पत्र शुरुआत कर लगे लगे कुछ तो छे छे हमारा दगड़ा जो सदन ही हमारे दगड़ कर दे
1: जी ध्यानी जी पहल चिट्ठी है इंचा मनोरमा रावत जी की विजय पार्क देहरादून बटे लिखना छिन की ग्राम जगत कुटुमदारी को रुमुकदा की सेवा सौले और ग्राम जगत पैटान वालों खुणे खूब आभार व आशीर्वाद वर अग्नि लिखना छिन की दगड़ों ब्याली रतुड़ी जी से छुट्टी फूफू कहानी सुनी सच माँ अपनी सभी फूफू याद आएगी ना ग्राम जगत एक इन मंच च जख 1-1.5 घंटा माँ सभी भावनाओं पर खट्टी मीठी रसीली ठसाक लगी जानवल कभी कभी कलकली कभी गदगदी जोश और कुजनी क्या क्या जद कभी भावना जुकड़ी में रहन दिन सब पर मलहम लग जान अग्नि लिखना की सिसई गांव की खैरी विपदा हो या बहुमुखी प्रतिभा की धनी अंकिता परिहार से प्रेरणादायी वार्ता हो सब बहुत हृदय स्पर्शी लगी ना दगड़ियों बचपन माँ पंजीरी की चम्भोरी की दूसरों को मुख पर फूफू तुम भी बुलदा चावल
0: और सब कुछ बैर है ना
1: जी
0: फू हाँ वही सभी बच्चों ने खेले
1: हाँ
0: गौर
1: जी
0: का खेल।
1: ध्यानी जी वो हम लोग ना आंगनबाड़ी में जान चाहे तो जो सत्तू मिल दो जा वांग कर दो जा
0: हाँ तो जय जमन मंजूर आवल वही करण है ना
1: जी
0: खास करे सत्यनारायण वो जो कथा सुनी और वो एक बार जो प्रसाद मिलो ना वो
1: जी
0: तक गिच घायले करता बोल रहे फू फू अतः
1: जी
0: फू फू और सब बैर।
1: हाँ जी
0: तो कुल मिला एक बात यह कि आप ब्याह कहानी पसंद आया और हम अपना सभी सुनदरों से माफी भी मंगला कि जो हमारे ट्रांसमीटर जो उकमा थोड़े से कखी न कखी तकनीकी व्यवधान रहे तो वे वजह से आप सीधा सीधा भल कही के और भल गुणवत्ता में तो नहीं सुन सका रेडियो पर लेकिन आपन अगर मोबाइल ऐप पर ये तो सुनोल तो पक्के बात कहानी माँ रसियाण आई। तो एक कहानी ही नहीं जो कि हमारे न्यार द्वार हमारा रिश्ता हमारे लोक जीवन हमारा जो रॉ रिश्ता छन उनसे जुड़िया जो भाव छा वो यही कहानी का छा। तो कहानी आप तो सुंदर लाग और श्री शंभु प्रसाद रतुड़ी जी की यह कहानी आपन सुनी पसंद कार ये के अलावा जो आप लिखना छन के साहब फिल्म अभिनेत्री अंकिता परिहार से भी सुंदर बातचीत तो पसंद कार आपन और सच में ये कुछ इनी बात छिन जो कि चिट्ठी से भी भेर चल जाते हैं
1: जी
0: और वक में अपने आस हम तो देखिए इनके हाँ सच में पहल भी तो इन लिखदा छा चिट्ठी
1: जी
0: भाई जो खास बात चो तो लेख ही दिया लेकिन ये का अलावा कि गौड़िन बैच दी कि बोड़ दी हूँ इन बात के भी उल्लेख हो जान छा चिट्ठी में
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना। और फलन मौक यख इन हुई हूँ तन हुई हूँ यानी अपन खोली छोड़ी कि हम पूर्व गांव का हाल समाचार दिन अच्छा तन नीचे मनोरमा जी आपा किया चिट्ठी भी कि ठीक छे जो कार्यक्रम आपन सुनी तो सुनाय छे पसंद भी करी लेकिन वही का अलावा वही बटे कि आपन क्या टीप ये सुंदर लगी था हम ते और यहीं खातिर हम हफ्ता भर आपक चिट्ठी को जगवाल कर दा। तो धन्यवाद जुगराज रहे ये तरीके से ही यो प्रेम यो स्नेह और यो अपनोपन हमारे ये कार्यक्रम था आप देना रहे और उन भी हम 90 सालों की अनंत यात्रा में अपना सुनदरों की वजह से छुआ जो उनकी 90 साल पता नहीं चला कि कब हुई गिन रेडियो का। तो आज भी एक सुंदर और टिकाऊ और विश्वसनीय और लोकप्रिय माध्यम सिर्फ हमन्ना आप लोग खुन बढ़ाई छो बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ध्यानी जी अगली चिट्ठी आई चा आचार्य इंद्रमणि थपलियाल ग्राम डोंक वाला पोस्ट ऑफिस प्रेमनगर अंबीवाला देहरादून बड़े लिखना छन की मिबल अपनी स्वरचित

0: पद्य काव्य पाठ और स्वरचित गीत आकाशवाणी का 90 साल प्रेषित करुणु छो। अगर बल आप थे मेरु काव्य पाठ गीत सुंदर और रुचिकर लगला तो कृपा कैरी बल स्वर परीक्षा मा पुनः आमंत्रित करने का आदेश पारित करया।
1: ये बाबा आदेश
0: जी
1: परीक्षा का खातिर आदेश नहीं होता भाई जी। आचार्य जी इन चुकी अगर देखा दुई छोड़ या मन पिछलदा भी आप थे समझा छा
0: जी
1: कि जो संगीत की बात छे तो वे माँ एक अलग से स्वर परीक्षा को आयोजन हों और उख माँ ऑनलाइन स्वर परीक्षा को आवेदन करे जान ठीक छे। तो तक लगा सुन ले आप और समझ भी लिया कि हम क्या बना छो जन के आप पहले भी हमार कार्यक्रम में एक दा शामिल हुई तो एक कवि का तौर पर हमन आप कविता पाठ रिकॉर्ड कर ठीक छे। वही तरीके से दूसरदा भी आप तो मौका मिल सकत अगर आपकी रचना जो लेख आपन भेजा छन चाहे वो गीत छन भजन छन कुछ भी छ अगर वे माँ लगनु छ कि हाँ छे छ प्रसारण योग्य तो बिल्कुल आप तो दोबारा से एक कवि का तौर पर आमंत्रित कर सकता। लेकिन जो बाट आप हिटन चाहना छन वे माँ बहुत लंबी प्रक्रिया छ। अगर आप गीत गाना चाहना छन अपना लिखा गीत भजन हालांकि ये माँ कोई भी स्वर परीक्षा का आयोजन नहीं होंगे सिर्फ और सिर्फ लोक संगीत में ही आप परीक्षा दे सकते हैं समझना चाहिए ना आप बस टक लगा के बिंग जाओ आप कि अगर आप लोक संगीत में स्वर परीक्षा देने चंदे न तो सीधी सी बात है आपन ऑनलाइन जब स्वर परीक्षा हुई ली तब आपन आवेदन करें। ये का अलावा अगर आप हिंदी का जो सुगम संगीत की स्वर परीक्षा देने चंदे वह माँ आप तक छूट वह माँ आप अपना लिखा या कोई रचना भजन ये गा सकते हैं लेकिन वो हिंदी में होना चाहिए वह तो बोल दो हम सुगम संगीत वे का वास्ता भी यही प्रक्रिया है कि जब भी ऑनलाइन आपका जो आवेदन मांगे जाला आपसे वह बता अपन अपना आवेदन भरण और जो पहल बाट छा कि दोबारा से आप कार्यक्रम में एक कवि का तौर पर अपनी रचनाओं को पाठ कर सकते हैं तो वे का खातिर सौ रास्ता है कि हम आप तय आपक रचनाओं को आलेख देख के आप तय आमंत्रित कर ला। तो उम्मीद है कि आज बटे कोई गंतो निराल आप तो हमें दुई तीन दा समझायाल एक दा फिर हम समझाना चाहो और आपन हम तक चिट्ठी भेजी एक खातिर आपको बहुत बहुत आभार। सुनारा कार्यक्रम ग्राम जगत के लिए ये माँ ही आप तय स्वर परीक्षा की सूचना भी मिल ली आज न तो बहुत कभी न कभी के लगे साल में एक दा दुई दा उन भी परीक्षा अच्छे सा है ना मठ मठ गए कि हूँ दिन जितना ज्यादा आवेदक होला तो वे का बाद ही हम तय जो हमारे महानिदेशालय चौक बेटे स्वीकृति मिलत कि भाई आप अब स्वर परीक्षा को आयोजन कर लिया कि लगे इतना आवेदन हुए गिन तो उख मत धैर्य रखन पड़ल आपने लेकिन जो रचनाएं छन तो हम देख लूला अगर प्रसारण का योग्य आपक रचनाएं छन तो जरूर कार्यक्रम में जगह दूला हम और आप तय आमंत्रित कर ला। धन्यवाद
0: जी। ध्यानी जी अगली चिट्ठी चा कमला जोशी रमेश जोशी राज राजेश्वरी विहार नथनपुर बटे लिखना चन की आप सभी था प्रणाम आकाशवाणी का 90 साल पूरा होने पर आप सभी था बल बहुत बहुत बधाई।
1: चला साहब कोई इतरा जय नाम तो बधे दे
0: जी। अगने लिखना छिन की 12 तारीख होने कन्या जूनियर हाई स्कूल नंद प्रयाग चमोली द्वारा प्रस्तुत किलकारी कार्यक्रम यूं था बल खूब पसंद है बल
1: पसंद जुगा छही छ वो खेलकर
0: जी बिल्कुल। दगड़ अंबल 11 तारीख हमारी खैरी कार्यक्रम में ग्राम सिसई बीरोखाल लुखों दगड़ जो बातचीत छ वा भी यूं तो खूब पसंद आवे।
1: बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तो सिसई की जो जन समस्याएं छन उन पर आधारित कार्यक्रम हमारी खैरी पसंद है और खेलकारी कार्यक्रम तो सदन ही लोकप्रिय कार्यक्रम छ और सालों बटे की जन की हम बताना चाहो ना कि अगर 90 साल आकाशवाणी का स्थापना का हुई चुक गिन और हम लगातार ये यात्रा में ऐतर हिटना चाहो तो वो हम बोल सकना कि हजारों हजार स्कूल हम उन किलकारी कार्यक्रम में शामिल करी पिछला 40-42 सालों में चाहे वो आकाशवाणी नजीबाबाद हो या फिर आप आकाशवाणी देहरादून। तो हमारे एक प्रयास है कि गाँव का जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों का बच्चा छन उन तभी एक इन मंच दिए जा कि उनकी आवाज हम देश दुनिया तक पहुंचा सका और उन माँ एक हौसला बढ़ सको कि हाँ बहरक दुनिया भी कुछ ऊंच अपन प्रतिभा भी वो दिखा सकें न तो घर गाँव में थोड़े समस्या तो छे या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को गीत कविता भेजन वो एक बात कुछ ना
0: जी।
1: लेकिन जब बच्चा रेडियो पर अपनी बात सुन दे ना तो बहुत सुंदर लगत और जब कभी हालांकि बहुत कम हों कि कहीं स्कूल में हम दोबारा चल जाओ लेकिन अगर दोबारा चल जाओ तो भाई उन बच्चों में जो निखार च वो बिल्कुल अलग हों। तो बहुत बहुत आभार जोशी जी आपको भी और आपक परिवार को भी ऐसा तो कुछ नहीं लिखो
0: अग्नि थोड़ा लिखियो चाचा कि बल श्री शंभू प्रसाद रतुड़ जी की कहानी छोटी फूफू बलियों ते पसंद है।
1: अरे वाह छोटी फूफू तो भाई लोकप्रिय हो गया
0: जी।
1: तो आपन भी हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुन और उखमा जो कहानी छे वो आप तक पसंद आए एक खातिर बहुत बहुत आभार और उम्मीद कर दा कि यू दगड़ आप बनाए रखला हमारे दगड़ हमारा

0: कार्यक्रमों पर एक पैनी नजर रखला क्योंकि मैं कोई हो सकत कि कमी बेसी हमसे भी हो सकत
1: जी
0: तो उन कमियों का तरफ भी आपन इशारा करण जन के मन शुरुआत में बोले कि चिट्ठी पत्रियों की संख्या हम तो ही सोचना चाहो कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ कमी होनी चाहिए, लेकिन आपका सुझाव भी तो चाहना चाहिए ना कि अगर कोई कमी होनी चाहिए तो क्या करे जा।
1: जी
0: तो ये वास्ता आपक चिट्ठी तो जरूर चेहना चाहिए क्या कि एक तरफा तो ठीक नहीं चाहिए, दुई तरफा हो बात भल लगत, न तो हमन अपन छोड़ बटी का बट बोल देन गीत सुना देनी वार्ता सुना देन कहानी और बस हो गया। लेकिन आप क्या चाहना चिन यू हम जानना चाहना और ये का खातिर जरूरी है कि आपक चिट्ठी पत्री हम ते मिलन चाहन, जरा पता बताओ दी एक दा फिर मठू मटके
1: जी हमार संग से पता चा चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com।
0: आज इनकर एक एक हरफ भी बता दियो कि क्या चो CHICTHI है ना
1: जी
0: चिट्ठी हो गया
1: हाँ
0: और
1: जी
0: GRAM ग्राम JAGAT ठीक बोले
1: जी बिल्कुल
0: बस। तो यो चो सॉन्ग पता और @gmail.com ते आप लिखो आनु चो,
1: बिल्कुल
0: तो यो चो हमारो सॉन्ग पता और ये से भी और सॉन्ग चो है पता। अगर आप हतक लिखी चिट्ठी भेजन चाहना चाहें तो आप हम तो लिख सकते हैं अपन साधारण डाक से हम तो चिट्ठी भेज सकते हैं जन के हमारा जो थपलियाल जो है वो भी हम तो साधारण डाक से भेज दें, कह बात रजिस्टर डाक से भेज दें, कह बात ई मेल पर भेज दें, कह बात व्हाट्सएप पर भी हमारे जो नंबर छन उनका आसपास ऊम अभी भेज दें कि साहब हमारे चिट्ठी पहुंचा दिया। नंद किशोर पोखरियाल जो छन वो अपार नीलकंठ बटेगी वो हम तो अपार गेट पर हमारे जो सुरक्षा गार्ड छे वही में भी दे जन कि साहब ये चिट्ठी जरा ग्राम जगत वो में दे दिया। तो चिट्ठियों का स्वरूप बहुत छन, पहुंचने को रास्ता बहुत अलग अलग छन। तो जो सौंगी चिट्ठी को और साधारण डाक से भेजने वाली चिट्ठी को पता छ चिट्ठी पत्री कार्यक्रम ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 2480001। तो अब एतवार वालों था धन्यवाद, बाद में दूं ला पहल जरा गीत सुनाओ दी जरा।
1: जी बिल्कुल श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल करना चाह गोपाल बाबू गोस्वामी को गयो सुंदर सी गीत।

0: गोपाल बाबू गोस्वामी का स्वर में अपन सुन यो पुराण गीत। हम ये कार्यक्रम में कोशिश करदा कि कभी गढ़वली, कभी कुमाऊनी, कभी जौनसारी गीतों तक हम शामिल करा। वो गीत दुर्लभ गीत हुई, गायक कलाकार पुराना हुई, और वो गीत जो कि हम बचपन बटे सुनना छुआ, या वो गीत जो आज एक नई पीढ़ी कुझान सुनोला कि नहीं सुनोला, ऊँ तक सुनाने की हमारी कोशिश रहें, तो यो हमार चिट्ठी पत्री अंक में विशेष प्रयास रहें। अब एतवार वालों तो धन्यवाद दियो ला।
1: बिल्कुल, जो एतवार दिन जो श्रोता हम दगड़ जुड़े छा उ छा अनिल मानसी, गौरव मानसी, पीतांबर सिंह चौहान, दगड़म छा मंजू रावत और देवेंद्र सिंह रावत,
0: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चिट्ठी चाहे वो अनुरोध गीतों का खातिर हो, और द्वि वचन तो आप चिट्ठियों में भी लिख देन कि लगे एक चिट्ठी में पढ़ना चाहे वो खूब नोच है पूरे परिवार का। और दगड़ में खास बात यह है कि जब हमारा भयबंध चिट्ठी लिख देन तो वो अपन मन की बात भी जरूर लिख देन उखमा, है ना। अनुरोध गीत तो ठीक हो गया, लेकिन ये का अलावा जब वो अपन बात जब तक नहीं लगता तब तक लगत कि ना साहब कुछ होया नहीं, तो यहाँ खातिर कुछ ना कुछ दुई वचन लेखी कि हम तक भेज दे दें। तो यही तरीके से बहुत सारा इना हमारा भयबंद छन जन के मंजू रावत और पी एस चौहान छन टिहरी गढ़वाल बटे का हम तक चिट्ठी लिखना चाह बना छन। सभी कार्यक्रम हम तक भला लग दें, और बाद में लिखे उनको कि साहब अपन अनुरोध की सुनने का खातिर, है ना। यही तरीके से और भी हमारा सुनदरा छन जन के शिवलाल जी छन, ये हम तो सदन आराज बटना, ये हमारा बहुत पुराना सुनदरा छन। रंगली पिंगली चिट्ठी लिख देनी हम तो हमेशा, पहले जब हाथ तक लिखी चिट्ठी भेजा चाहे ना तब भी तीन तीन से इस्तेमाल करता चाहे हैरी भी नीली भी, है ना, सब तरह का। इबरी दा भी देखा आप जय किसान इंटर कॉलेज रोड़धार बटे टिहरी गढ़वाल बटे की, ये जब अपन अनुरोध गीत सुनना को लिखना चाहे तो यून फिर कंप्यूटर में भी मोबाइल पर भी रंगीन बना रहे चिट्ठी, है ना। तो ये खास श्रोता छे हमारा जो कि सदन हमारे दगड़ जुड़ देने, तो आप सभी का खातिर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एतवार दिन भी हमारे दगड़ कार्यक्रम में छाए। अब एक दा देखला कि कुछ चिट्ठियों में बढ़ोतरी हुन जी की ना रुचि जी है
1: जी।
0: एक दा फिर से दे लगौला हम और बतौला पता।
1: हमारे चिट्ठी पता जी चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com।
0: तब है एक दा फिर आपसे भेटोला आपका चिट्ठी पत्रियों का दगड़ी आज को यू अंक यखिम तक सुनारा कार्यक्रम ग्राम जगत।

श्रोताओं, अभी आप सुना छा आज को चिट्ठी पत्र को अंक और आपन सुनिए वाली की कदगत चिट्ठी आप लोगों भिजी छिन। तो श्रोताओं, आपसे यही हद जुड़े का ना छा कि जद से ज्यादा चिट्ठी आप इन करा कार्यक्रम में भेजा है ना, तभी तो हम तक कार्यक्रम इना बड़े हम बुन ना छा रुना बड़े आप कोई होंगे न्याणा ना, तो हम उन पर के ही बुन की हाँ के करना कुछ नयू करना मन ही नहीं कर दी ना है ना। तो आप इन करना आपन चिट्ठी ग्राम जगत एट द रेट पर अपडो

0: चिट्ठी भिजणा, अपड़ बात विचार भिजणना, अपड़ा सुझाव आपन हम थे दिन। श्रोताओं, अब कार्यक्रम था अग्नय बढ़ंदा और आप थे लेके चल दें जौनसार का छोड़ और छुड़ंदा है सुंदर सी जौनसारी गीत।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, जगत लाल डोगरा का स्वरमा अभी आपन सुने सुंदर सी जौन सारी गीत और उम्मीद कर दिया गीत आते है पसंद है वालू। श्रोताओं, समय की घड़ी जो आज हमारी घड़ी बतानी चाह कि अब धीरे धीरे वालू भगत होनु चाह उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को, तो आवा घड़े कमी सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। उत्तराखंड में 1 जुलाई की अर्हता तिथि के आधार

0: आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 307 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कहा, राज्य में सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता से हो रही हैं। प्रदेश के खेल छात्रावासों को खेल नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना के तहत इसका एक पायलट प्रोजेक्ट इसी साल शुरू किया जाएगा। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोकभवन में एआई थीम रूम का उद्घाटन करने के साथ ही एआई ऑन व्हील्स वाहन का फ्लैग ऑफ किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे उत्तराखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। उत्तराखंड में 1 जुलाई की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआर से पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रदेश में 29 मई से 7 जून तक गणना प्रपत्र की प्रिंटिंग और कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी कार्य संपादित किए जाएंगे। 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण और संकलन करेंगे। उत्तराखंड में 14 जुलाई को ड्राफ्ट रूल का प्रकाशन किया जाएगा। इसी क्रम में 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच दावे और आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। इसी बीच 10 जुलाई से 11 सितंबर तक सभी नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड में 11,733 पोलिंग बूथ के सापेक्ष वर्तमान में प्रदेश में राजनीतिक दलों ने 21,808 बीएलए की तैनाती कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 307 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 243 चिकित्सा अधिकारियों, 42 फार्मासिस्ट और उद्यान विभाग के अंतर्गत 22 प्रयोगशाला सहायकों और मशरूम पर्यवेक्षक शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि वे संवेदनशीलता, समर्पण और सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में 32,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता से हो रही हैं।
1: हमने नकल का कानून लागू किया और सख्त नकल का कानून। ये नकल का कानून केवल उत्तराखंड में नहीं, आज पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है। इसी का परिणाम है कि ये 32,000 से ज्यादा भर्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और सभी परीक्षाएं प्रदेश में आज पारदर्शिता और ईमानदारी से संपन्न कराई जा रही है। अब नौकरी नकल से नहीं बल्कि प्रतिभा से मिल रही है। अब सिस्टम में सेटिंग से काम नहीं होता है बल्कि अब सिलेक्शन का एक ही आधार होता है, वो होता है मेरिट। अब सारे काम मेरिट से होते हैं।
0: हरिद्वार जिले के रोशनाबाद पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह की पहल पर पुलिस जवानों और उनके परिवारों के लिए अत्याधुनिक हेल्थ क्लब बनाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सांसद निधि से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस हेल्थ क्लब का आज भूमि पूजन किया। उन्होंने कार्य को जल्द पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया।
2: मैंने पहले भी हरिद्वार जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क ये सांसद निधि से बनवाए हैं। उसी क्रम में आगे सुझाव आया कि पुलिस के जवानों की फिटनेस बराबर बनी रहे उसके लिए हेल्थ क्लब ये बने, तो उसके जो भवन मेरी सांसद निधि से करीब 25 लाख रुपए का बनेगा और उसमें और उसके बाद जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी सब करण आएंगे, तो उसके आज भूमि पूजन के लिए मैं यहाँ पर आया।
0: कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज पौड़ी गढ़वाल के पाबो विकासखंड में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पाबो क्षेत्र में संचालित विकास कार्य स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने और आमजन को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने जरूरतमंद लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो का निरीक्षण कर मरीजों का हालचाल जाना।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: प्रदेश के खेल छात्रावासों को

0: खेल नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना के तहत इसका एक पायलट प्रोजेक्ट इसी साल शुरू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल की नीति तय कर दी गई है। इसके तहत सभी जिलों के लिए एक एक खेल का चयन किया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज सचिवालय में आयोजित विभागीय बैठक की समीक्षा के बाद ये जानकारी दी।
1: पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने यह तय किया है कि हम कहीं पे भी प्रदेश में किसी भी हमारे ऐसे स्पोर्ट्स हमारे जो छात्रावास है उनको हम स्पोर्ट्स नर्सरी के रूप में हम उसको डेवलप करें, उसके भी कार्ययोजना के लिए तैयारी के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आह्वान है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट का कल्चर हम जरूर बढ़ाने का काम करें। तो ऐसे ही हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स का हमने चयन किया है और 13 स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दे पाए तो उसको लेकर भी योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।
0: खेल मंत्री ने कहा कि चंपावत जिले में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में प्रवेश के लिए प्रतिभाशाली छात्राओं को एक मौका और दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश के लिए 1,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में अगर कुछ मेधावी बालिकाएं आवेदन नहीं कर सकी हैं तो उनका स्पॉट ट्रायल के जरिए प्रवेश किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को 38वें राष्ट्र खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज लोकभवन में एआई थीम रूम का उद्घाटन करने के साथ ही एआई ऑन व्हील्स वाहन का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आज उत्तराखंड में एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई है और यह क्रांति देश की युवा शक्ति तथा अमृत पीढ़ी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल ने कहा कि एआई थीम रूम नवाचार, अनुसंधान और जन भागीदारी का एक जीवंत केंद्र बनेगा, जहां युवा केवल तकनीक का उपयोग ही नहीं सीखेंगे बल्कि समस्याओं के समाधान भी विकसित करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि यहां से निकलने वाले स्टार्टअप्स और शोध कार्य उत्तराखंड को नई तकनीकी दिशा प्रदान करेंगे। राज्यपाल ने एआई ऑन व्हील्स पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि यह मोबाइल एआई केंद्र प्रदेश के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों और सुदूर गांवों के विद्यार्थियों तक आधुनिक तकनीकी शिक्षा पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल डिजिटल अंतराल को समाप्त कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करेगी। गौरतलब है कि लोकभवन में स्थापित एआई थीम रूम एक अत्याधुनिक तकनीकी और नवाचार केंद्र है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में तकनीकी असमानता को कम करना और उन लोगों को आधुनिक तकनीकी संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना है जिन्हें सामान्यतः ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। वहीं एआई ऑन व्हील्स एक अत्याधुनिक मोबाइल तकनीकी प्रयोगशाला है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों को उत्तराखंड के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
0: कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण ले चुके पूर्व सैनिक आश्रितों के लिए आज देहरादून में रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में सैनिक कल्याण विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के संयुक्त प्रयासों से 628 पूर्व सैनिक आश्रितों को कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि वर्तमान में 227 आश्रित प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि रोजगार मेला केवल नौकरी प्राप्त करने का अवसर नहीं बल्कि स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प तथा युवा सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। उत्तराखंड में 1 जुलाई की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 307 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कहा, राज्य में सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता से हो रही हैं। प्रदेश के खेल छात्रावासों को खेल नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना के तहत इसका एक पायलट प्रोजेक्ट इसी साल शुरू किया जाएगा। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोकभवन में एआई थीम रूम का उद्घाटन करने के साथ ही एआई ऑन व्हील्स वाहन का फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचारों का बाद एकदम फिर से स्वागत है आप सभी को अपने बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत में। मैं छू आप दगर रुचि रावत। श्रोताओं, भारत अपनी विविध संस्कृति और खान पान का वास्ता पूरा विश्व में प्रसिद्ध च। हर राज्य को अपड़ो अलग अलग पारंपरिक भोजन च, जो वखे की संस्कृति, जलवायु और जीवन शैली थे दर्शांत। अब बात कर दें अपड़ा उत्तराखंड की। हमारा उत्तराखंड में कोदे की रोटी, झंगोरे की खीर, कफली, फाणो, चैंसू, भटोणी, थिचोणी, मोटी दाल जन अनेक व्यंजन आज भी लोगों की पसंद बढ़े। श्रोताओं, पारंपरिक भोजन केवल स्वादिष्ट ही ना बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होंदिन। पुराना समय में लोग घर में ही बढ़िया शुद्ध और पौष्टिक भोजन खाँदा छा, जैसे वो स्वस्थ रहंदा छा। यूं व्यंजनों में स्थानीय अनाज, दाल और हरी भुजी को उपयोग ज़्यादा होंचा। पर आज का समय में फास्ट फूड को चलन तेजी से बढ़नो छ, जिनका कारण लोग अपना पारंपरिक भोजन से दूर होना छिन। यहाँ को असर स्वास्थ्य पर भी दिखने को मिलनो छ। इले जरूरी चा कि हम अपनी पारंपरिक खान पान की संस्कृति थे अपनाया और अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाया। किले की पारंपरिक भोजन हमारी पहचान और विरासत छ। यहाँ थे बचाण और बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी छ। तो श्रोताओं, उम्मीद कर दूँ कि आप लोग जरूर इन बात है समझ लिया और अपना जो आने वाली पीढ़ी छिना अपना बच्चों था कि शुद्ध और पौष्टिक भोजन खिलाला। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ दें और आप थे लेके चल दें कुमाऊं का छोड़ और सुन जाए सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: श्रोताओं, लता तिवारी का गया ये सुंदर सी कुमाऊनी गीत का दगड़ी ही अब भगत वेगी गडोलीमा उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को आवाज सुना समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में नेहा।

0: पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 307 नवनियुक्त अभ्यर्थियों ते नियुक्ति पत्र प्रदान करीन बोली कि नियुक्ति पत्र केवल रोजगार को दस्तावेज नहीं चे बल्कि प्रदेश वासियों की सेवा को संकल्प पत्र चे। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का तीसरा चरण की घोषणा करी। केंद्र सरकार ने बोली कि देश में पेट्रोल डीजल LPG और प्राकृतिक गैस को पर्याप्त भंडार उपलब्ध छ और राज्य में चारधाम यात्रा पूरा उत्साह का दगड़ा जारी। 25 दिनों में 12,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम का दर्शन करे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में कुल 307 नवनियुक्त अभ्यर्थियों ते नियुक्ति पत्र प्रदान करीन जैमा 243 चिकित्सा अधिकारी 42 फार्मासिस्ट और उद्यान विभाग का अंतर्गत 22 प्रयोगशाला सहायक और मशरूम पर्यवेक्षक शामिल छिन। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि यू नियुक्ति पत्र केवल रोजगार को दस्तावेज नहीं च बल्कि प्रदेश की 125,000 जनता की सेवा को संकल्प पत्र च। उन नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवेदनशीलता समर्पण और सेवा भावना का दगड़ा अपना दायित्वों को निर्वहन करना का आह्वान करे। मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य सरकार कृषि और उद्यानिकी ते नई दिशा द्योण को प्रतिबद्ध, कीवी ड्रैगन फ्रूट उच्च सघन सेब की खेती मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन जन उच्च मूल्य वाली फसलों ते बढ़ावा देके किसानों की आय बढ़े बढ़ोन का खातिर प्रभावी प्रयास करे जाना छिन। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन की अपार संभावनाएं छिन। उन बोली कि मशरूम उत्पादन किसानों को आय को अतिरिक्त स्रोत बन सकदो जहां से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होली और सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में गुणात्मक सुधार आलो। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का तीसरा चरण की घोषणा करी। ये चरण में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीका से यू अभियान चले जालो जैमा उत्तराखंड आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हरियाणा झारखंड कर्नाटक महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड ओडिशा पंजाब सिक्किम त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल छिन। दगड़ा ही दिल्ली चंडीगढ़ दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश भी येमा शामिल छिन। केंद्र सरकार ने बोली कि पश्चिम एशिया संकट का कारण कच्चा तेल LPG और LNG का आयात पर कुछ प्रभाव पड़ी च। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मन बताई कि हालांकि सरकार ने स्थिति से निपटने को प्रभावी कदम उठाए छिन जैका चलता देश में पेट्रोल डीजल LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध छिन। उन बताए कि रिफाइनरियां अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करनी छिन और LPG उत्पादन में भी वृद्धि करेंगे। वर्तमान में देश में कै भी रिटेल आउटलेट या LPG वितरक केंद्र पर आपूर्ति बाधित होन या स्टॉक समाप्त होन जन कोई स्थिति नीचे।
1: हमारे पास पेट्रोल डीजल LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही डोमेस्टिक PNG और CNG ट्रांसपोर्ट की भी 100% अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल माह 42 महीना का उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गए। पिछले साल मार्च में यह 3.88% छे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रा स्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मूल धातुओं और विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं का दाम बढ़ोन का कारण वे।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड ते फॉलो कर सकते हैं।

0: लाख 5,000 अर श्री यमुनोत्री धाम में 2,07,000 तीर्थयात्री पहुंचे न केदारनाथ धाम में पंजाब का रोपड़बट्टी आया श्रद्धालु दिवाकरन बताए कि यात्रा मार्ग पर प्रशासन की टीम हर टाइम सहायता कन को उपलब्ध छ और दर्शन बेहद सहजता का दगड़ी होना छिन।
1: कल हमने केदारनाथ की यात्रा के लिए पैदल चलना शुरू किया और बड़े प्रेम से हम यहाँ आए हैं। थोड़ा मौसम बीच में ऐसा रहा जिससे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन भगवान भोलेनाथ का नाम लेते लेते हम यहाँ पे बड़े आराम से पहुंचे और बहुत अच्छे हमारे दर्शन यहाँ पे हो गए हैं। और शासन प्रशासन का यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरफ से खाने से पीने से और स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीजें हैं सबको प्रोवाइड कराई जा रही है। किसी प्रकार के कोई किसी को समस्या नहीं आ रही। पुलिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, जितने भी मित्र पुलिस है सबका साथ अच्छे से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल आता हूँ वैसे, पर इस साल व्यवस्थाएं कुछ ज्यादा अच्छी हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोले कि चारधाम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता छ। श्रद्धालु सुगमता से दर्शन करी सकुन यहाँ का वास्ता स्लॉट प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण प्रणाली ते प्रभावी बने छ। नशा मुक्त भारत अभियान का तहत अल्मोड़ा पुलिस की तरफ बटी जिला में जागरूकता अभियान चले जाणो छ। ये का तहत सार्वजनिक स्थानों मेडिकल कॉलेज विद्यालय और महाविद्यालयों में पुलिस जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करी की ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं और लोगों ते नशा का दुष्प्रभाव ते लेके जागरूक करे जाणो छ। ये क्रम में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे गए। पुलिस उपाधीक्षक बलवंत सिंह रावत ने बताया कि पुलिस मादक पदार्थों की रोकथाम को लगातार कार्रवाई करनी छ। दगड़ा ही लोगों का बीच जय के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे जाना छिन ताकि युवाओं में नशा की प्रवृत्ति पर रोक लग सको।
2: प्रदेश में जिस प्रकार NDPS के जो मादक द्रव्य हैं उनके प्रयोग को लेकर के जनपद पुलिस द्वारा जनपद प्रशासन द्वारा लगातार प्रहार किया जा रहा है और स्मैक हो गांजा हो आग बाकी जितने भी मादक द्रव्य होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दूसरा पक्ष जो है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मेडिकल छात्र है, चाहे वो अन्य वर्ग के हैं, उन सबके बीच में जागरूकता फैलाना कि किस प्रकार हम लोग इन मादक द्रव्यों से अगर कोई ग्रसित हो गया है तो किस प्रकार उनको इस तरह की चीजें छुड़वाई जा सकती है जिससे कि इस तरह की प्रवृत्तियों को रोका जा सके।
0: बागेश्वर का विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक ये पर्यटन सीजन में ट्रैकर्स की पहली पसंद बनी छ। 15 अप्रैल बटी ट्रैकिंग को खोले गए ये पिंडारी ट्रैक रूट पर अब तक 1,106 पर्यटकों ने पंजीकरण कर लिया। लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या ते देखी कि बागेश्वर वन प्रभागन ट्रैक रूट पर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता ते लेके विशेष अभियान तेज कर लिया। ग्लेशियर रेंज अधिकारी डॉली डोगल ने 6 सदस्यीय टीम का दगड़ा ट्रैक मार्ग को निरीक्षण करी। ये दौरान पर्यटकों और स्थानीय गाइडों का सहयोग से स्वच्छता अभियान भी चले गए। वन विभाग की टीम ने 0 पॉइंट से खाती तक ट्रैक रूट से लगभग 25 किलोग्राम प्लास्टिक और अन्य कचरा एकत्र करी। प्रभागीय वन अधिकारी आदित्य रत्नन बोली कि पिंडारी ट्रैक दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में स्थित इले सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण द्वियों ते सर्वोच्च प्राथमिकता देन अत्यंत आवश्यक छ।
3: जितना भी जो कचरा लेके जा रहे हैं उसके लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट FDR जमा कराना है और फिर वापस जब वो लेके आ रहे हैं तो उनको पूरा वापस भी कर दे रहे हैं हम लोग। तो इससे एक अवेयरनेस भी हो रहा है कि ऐसे जो हाई अल्टीट्यूड पे हिमालयन जो जोन है वहाँ पे जैसे प्लास्टिक हो गया या कचरा वो उस इको सिस्टम को डिग्रेड करता है, तो लोग भी पर्यटक भी एक तरह से अवेयर हो रहे हैं और इससे वर्ड ऑफ माउथ भी फैल रहा है लोगों में, वो लोग सूचना भी दे रहे हैं। तो हम लोग साथ ही साथ ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे कचरा जो हो रहा है जिला गंगा समिति जो है उसके माध्यम से हम लोग जैसे DFO वहाँ पे सदस्य सचिव होते हैं तो वहाँ पे भी इसको हाईलाइट करके, तो इसी क्रम में हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको और सुचारू बनाया जा सकता है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 307 नवनियुक्त अभ्यर्थियों ते नियुक्ति पत्र प्रदान करीन बोले कि नियुक्ति पत्र केवल रोजगार को दस्तावेज नहीं च बल्कि प्रदेशवासियों की सेवा को संकल्प पत्र च। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का तीसरा चरण की घोषणा करी। केंद्र सरकार ने बोली कि देश में पेट्रोल डीजल LPG और प्राकृतिक गैस को पर्याप्त भंडार उपलब्ध और राज्य में चारधाम यात्रा पूरा उत्साह का दगड़ा जारी। 25 दिनों में 12,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम का दर्शन करे। ये का दगड़ा ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त।

0: सॉफ्टवे. नमस्कार. श्रोताओं, आज कुग्राम जगत कार्यक्रम बेक में संपन्न हूं, अनुमति दिया. नमस्कार.
1: अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत. ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है. प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत.

किसान साथियों राम राम। FM 100.5 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत। आपके साथ मैं हूं कुलदीप सिंह। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां देते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे किसान साथी नई नई जानकारी हासिल कर अपनी फसल से अच्छी आय प्राप्त करें। इसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे गन्ने की फसल में सामयिक कार्य पर। इसके अलावा बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण का कृषि पर प्रभाव। साथियों, गन्ना एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ये देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य रूप से चीनी, इथेनॉल और अन्य उप उत्पादों के उत्पादन के लिए गन्ने की अधिकतम पैदावार और टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कुशल खेती करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। साथियों, गन्ना एक जल गहन फसल है जिसके विकास के पूरे चरण में पानी की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता रहती है। साथियों, सिंचाई से मिट्टी में पर्याप्त नमी का स्तर सुनिश्चित होता है जिससे स्वस्थ फसल विकास और उच्च पैदावार को बढ़ावा मिलता है। कुशल खेती करना प्रत्येक फसल के लिए आवश्यक है, लेकिन जब गन्ने की बात आती है तो कुछ विशिष्ट बारीकियां होती हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। किसान साथियों, गन्ने का अंकुरण देर से होने के कारण कभी कभी खरपतवारों का अंकुरण गन्ने से पहले हो जाता है जिसके नियंत्रण के लिए एक गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बारिश प्रारंभ होने तक फसल पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा कर लेना चाहिए। गन्ने के पौधों की जड़ को नमी और हवा उपलब्ध कराने के लिए और खरपतवार नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए गर्मियों में प्रत्येक सिंचाई के बाद गुड़ाई फावड़ा कसी या कल्टीवेटर से करना हमारे गन्ने की फसल के लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद या एक या दो दिन बाद अपने पास के कृषि केंद्र के अधिकारियों से संपर्क कर दवाई का छिड़काव जरूर करें ताकि खरपतवार न उग सके। साथियों, गन्ने की फसल को गिराने से बचाने के लिए गन्ने के पौधों की जड़ों में जून माह के अंत तक मिट्टी जरूर चढ़ा दें। उसके बाद जब फसल और थोड़ी बड़ी हो जाए तो जुलाई माह में फिर मिट्टी चढ़ा दें ताकि बरसात में फसल गिर ना पाए। इसके अलावा अपनी फसल को कीट से बचाने के लिए कृषि केंद्र के अधिकारियों से संपर्क जरूर करें। साथियों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। उसके बाद आपकी भेंट करवाते हैं डॉक्टर MS पाल से। भेंट वार्ता का विषय है चारे की नई प्रजातियां।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर एम एस पाल सर, कृषि वैज्ञानिक। सर आपका स्टूडियो में स्वागत है।
4: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। आज हम आपसे बात करने वाले हैं चारे के लिए, जो किसान भाई अगर प्रजातियां अच्छी, अगर वो चाहते हैं कि वो अच्छी प्रजाति का चुनाव करें तो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं डॉक्टर साहब, जिसको लगा के हमारे किसान भाई पशुओं से जो अधिक एक आय है अर्जित कर सकते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं सर चारे की?
4: चारे की बहुत अधिक समस्या रहती है, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो। सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि दिसंबर जनवरी में और गर्मियों में मई जून में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी की वजह से चारे की बढ़वार कम होती है, चारे की उपलब्धता नहीं रहती है। ऐसे में हमारे किसान भाई काफी परेशान रहते हैं। इसके अलावा ये भी एक चिंता का विषय है कि बहुत किसान भाई हमारे डेयरी रखते हैं, कई नंबर ऑफ पशु ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए चारा साल भर उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। तो साल भर चारा कैसे लें, ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सभी किसान भाई चाहे मैदानी क्षेत्र के हों चाहे पर्वतीय क्षेत्र के हों, वो चारे के लिए जरूर कुछ न कुछ जमीन अपनी दें और उसमें चारा लगातार बोएं, जिससे उन्हें हरा चारा उनके पशुओं की आवश्यकता के अनुसार मिलता रहे। एक मोटा मोटा थंब रूल मैं आपको बताऊं कि जो फसलें चारे वाली फसलें या सामान्य फसलें जिनको हम खरीफ ऋतु में लगा सकते हैं, उनको हम फरवरी मार्च से भी लगा सकते हैं। चारे की फसलों में मक्का, बाजरा, चरी, लोबिया, ग्वार और घासें, अन्य घासें भी आते हैं जैसे नेपियर। आजकल हाइब्रिड नेपियर की बहुत ज्यादा बात चल रही है। छाया वाले क्षेत्रों में गिनी ग्रास है, बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ ग्रासेस उपलब्ध है, किसान भाई उनको लगा सकते हैं। तो पहले हम फसलों की बात करते हैं, क्योंकि आप किसान भाई अपने किचन गार्डन या नियर बाई जहां पर डेयरी है वहां पर आप लगाएं। तो पहले आती है मक्का की फसल। मक्का की बहुत अच्छी फसल है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, लगभग 7 दिन में तैयार हो जाती है। और इसको आप बोने का फरवरी से लेकर आप जून जुलाई तक कभी भी बो सकते हैं। जून जुलाई जिनमें जहां पानी की उपलब्धता नहीं है वो पानी बारिश होने पर बोएं, और जिनके पास पानी की उपलब्धता है वो अभी भी बो सकते हैं, चाहे मैदानी क्षेत्र हो चाहे आपका पर्वतीय क्षेत्र हो। इनकी मुख्य प्रजातियों में है अफ्रीकन टॉल, जो बहुत पुरानी प्रजाति है लेकिन आजकल भी इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और लगभग 7-8 फीट लंबी जाती है। दूसरी प्रजाति पंजाब विश्वविद्यालय से विकसित की गई है, जिसका नंबर है J1006। एक है PML6। ये तीन मुख्य प्रजातियां हैं जिनको आप चारे के रूप में लगा सकते हैं। जो भी बीज उपलब्ध हो, जहां से भी बीज उपलब्ध हो वहां से आप लें। और इनको मक्के का 50 किलोग्राम बीज लगता है एक हेक्टेयर में, नाली है तो उसके अनुसार आप निकाल लें, तो आपका 50 से आप भाग दिखे उसके अनुसार निकाल लें। 50 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगता है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में बोएं, जिससे आपका बीज बर्बाद न हो, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रखें। तो मुख्य चीज आती है कि इनको काटा कब जाए, जब आपकी ऊपर वाली बाल निकलना शुरू हो जाए तभी काटनी चाहिए, पहले काटेंगे तो पैदावार कम होगी और उनकी गुणवत्ता भी कम रहेगी। दूसरी फसल आती है बाजरा की। बाजरा आजकल बहुत ज्यादा किसान भाई लगा रहे हैं, क्योंकि पहले सिंगल कट प्रजातियां थी, आजकल बहु कटान वाली प्रजातियां उपलब्ध हैं। इनको आप मैदानी क्षेत्रों में और ये मध्यम ऊंचाई के पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। इनकी प्रजातियों में जायंट बाजरा एक, राज बाजरा दो, एक बैफ बाजरा, बैफ से निकला हुआ है बैफ बाजरा एक। इसके बाद आपका प्रो एग्रो ने एक प्रजाति निकाल रखी है प्रो एग्रो 1। इसी तरह अवका बाजरा चरी 19 के नाम से उपलब्ध है, कहीं कहीं ये गुडविल के नाम से कुछ प्रजाति एक बाजरा की प्रजाति उपलब्ध है, इनकी 4-5 कटान तक आप काट सकते हैं। तो इनका बीज लगभग 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगता है और इनको आप फरवरी से लेकर जून जुलाई तक बो सकते हैं या फरवरी से लेकर मई जून तक लगाएंगे तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जहां पर पानी से सिंचाई की सुविधा है वहीं पर लगाएं। इसमें भी जो सिंगल कटान है उनको फूल आने पर आप काटें और जो बहु कटान वाली प्रजातियां उनको 45 दिन बाद काटें और इसके बाद आप 30 दिन के अंतर पर दूसरी और तीसरी कटान करें। 30 दिन के अंतर पर और काटने के बाद उसमें आप पानी लगाएं और 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें जिससे आपकी बढ़वार अच्छी हो। इसके अलावा आपको आती है चरी, जिसको आप सामान्यतः चरी कहते हैं। चरी हमारे किसान भाई सभी फसलों को बोल देते हैं लेकिन चरी का ज्वार से मतलब है, जिसको आप ज्वार या सोरगम कहते हैं। इसमें आपको इस समय बहुत मल्टीकट प्रजातियां कई उपलब्ध हैं जो कि आप प्राइवेट कंपनियों ने और विश्वविद्यालयों ने निकाल रखी हैं। इसमें आपकी एक पन्नगर विश्वविद्यालय से विकसित प्रजाति है पंतचरी 6, दूसरी प्रजाति है CSH20MF, CSH24MF। ये प्रजातियां हैं आज जो मल्टीकट हैं जिनको आप बहु कटान कर सकते हैं, 2 से 3 कटान कर सकते हैं। एक प्रजाति है CUFS29 जो बहु कटान वाली प्रजाति है और महाराष्ट्र में विशेष रूप से साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा उगाई जाती है। एक नई प्रजाति तमिलनाडु से निकली है CSV33MF, इसका बीज आपका 10 किलोग्राम लगता है। 10 किलोग्राम बहुत कम बीज लगता है, बीज बहुत महीन होता है और ये पेरिनियल प्रजाति है जिसको आप 2-3 साल तक लगातार इसको आप काट सकते हैं। तो ये प्रजाति है और सामान्यतः इसका बीज आपको 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। 30 सेंटीमीटर की बनी हुई लाइनों में इसको बोएं और इसको भी आप फरवरी मार्च से लेकर जून जुलाई तक आप कभी भी लगा सकते हैं। शर्त यह है कि यदि सूखे में बोई गई है फसल या आपने सिंचाई वाले क्षेत्र में लगी है तो 45 दिन से पहले पशुओं को नहीं खिलानी चाहिए क्योंकि इसमें हाइड्रोसाइनाइड एक तत्व पाया जाता है जिसको HCN भी बोलते हैं। ये पशुओं के लिए बहुत घातक होता है, कभी कभी पशु मर भी सकता है, तो इसलिए 45 दिन से पहले न खिलाएं। 45 दिन के बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है और पशुओं को खिलाया जा सकता है। और इसको भी आप 45 दिन पर, क्योंकि बहु कटान वाली प्रजातियां मैंने आपको सभी बताई हैं, 45 दिन पर पहली कटान करें, इसके बाद 30 दिन के अंतराल पर करते रहें और 2-3 कटान आप ले सकते हैं। और इसकी भी पैदावार 450 से 550 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको मिल सकती है। इस तरह मक्का की 350 से 450 क्विंटल मिल सकती है, बाजरा की भी 350 से 450 क्विंटल हरा चारा इसको मिलती है, तो आप लोग इस अनुसार व्यवस्था करें। इसके अलावा आती है लोबिया, जो कि आप सभी लोग जानते हैं लोबिया ये दलहनी फसल है। इसका भी बीज आपको लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। आप इसको सिंगल फसल के रूप में लगाएं या आप इनको बाजरा, मक्का और चरी के साथ, ज्वार के साथ मिलाकर बोएं जिससे आपकी दलहनी और खाद वाली फसल की दोनों को मिलाकर चारे की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। पन्नगर विश्वविद्यालय में बहुत ढेर सारी प्रजातियां विकसित की गई हैं जिनमें मुख्य रूप से UPC 625, 628, 622 हैं जो कि रिसेंटली डेवलप की गई हैं और बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। इनकी बढ़वार अच्छी होती है तो इनको आप मिला के बोएं तो आपकी चारे की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। और वैसे आप सिंगल बोते हैं इसको तो इसकी आपको 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसको आपकी हरे चारे की उपलब्धता होती है। इसके अलावा कुछ घासों की हम बात करते हैं, जैसे घासों में आजकल BN हाइब्रिड की बात, जिसको हाइब्रिड नेपियर भी कहते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। तो BN हाइब्रिड एक आजकल सभी घासों से बहुत ऊपर है क्योंकि इसकी उपज बहुत अच्छी होती है। इसको 1000 से लेकर 1500 क्विंटल पर हेक्टेयर एक साल में आपको 4-5-6 कटान मिल सकते हैं और इसको आप लगातार 4-5 साल तक लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी घास की जाति कह लो या प्रजाति कह लो जो इस समय उपलब्ध है। पहले आपको हाथी घास के नाम से किसान भाई हमारे जाना करते थे जिनमें रोए होते थे, पशु कम खाते थे, तो इसको हाइब्रिड बाजरा और नेपियर कई प्रजातियां विकसित की गई हैं। इनकी उपज बहुत अच्छी है, बढ़वार बहुत अच्छी है, चारे की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आप जहां पर थोड़ी नमी हो वहां पर लगाएं और इसको फरवरी में और बरसात आने पर लगा सकते हैं। इस समय बहुत अच्छा टेम्परेचर चल रहा है, इस समय किसान भाई लगा सकते हैं। इसमें पन्नागढ़ विश्वविद्यालय में 10 प्रजातियां भारतवर्ष से अच्छी विकसित हुई हाइब्रिड नेफियर की प्रजातियां उपलब्ध है। किसान भाई चाहेंगे तो यहां से बीज भी उनको मिल जाएगा। इसका बीज नहीं होता बल्कि इसको रूटेड स्लिप या स्टेम कटिंग उपलब्ध होती है और यहां पर पन्नागढ़ विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। अब इनमें मुख्य प्रजातियों में जहां तक हम बात करते हैं तो इसमें आपको प्रजातियां आरबीएन 13, एनबी 37, बीएनएस 10, कोयम्बटूर 4-5, पंत संकुल 1 और बैप से एक प्रजाति विकसित की गई है बैप 10। ये सभी प्रजातियां अपने क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम पाई गई हैं और इनकी पैदावार 1000 क्विंटल से ज्यादा मिली है। कोयम्बटूर 5 और पंत बीएन हाइब्रिड 1 इनकी ऊपर सबसे ज्यादा पाई गई है, जो कि 1500 से 2000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर मिल सकती है। 4 से 5 से 6 कटान आपको मिल जाएंगी। इसको आपको रूटेड स्लिप उपलब्ध है जिनको आप बो सकते हैं और इनको 70 सेंटीमीटर की बनी हुई लाइनों में लगाएं। ध्यान रहे 70 सेंटीमीटर बनी हुई लाइनों में लगाएं और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर करें और गोबर की खाद या बर्मी कम्पोस्ट डालें बोते समय। इसके बाद फसल जब 20-25 दिन की हो जाए, लगभग 10-15 दिन आपको जर्मिनेशन में लगेंगे तो 30-35 दिन की हो जाए तो एक बार आप यूरिया का छिड़काव करें। पहली कटाई 60 दिन बाद करें। इसके बाद हर कटान के बाद आप पानी लगाएं और यूरिया का छिड़काव करें और बरसात में इसमें गोबर की खाद भरें तो आपकी 4-5 साल तक अच्छी तरह मेंटेन करेंगे तो हरा चारा आपको उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर एकदम ड्राई एरिया है, पथरीली जमीन है, कंकरीली जमीन है, नमी भी कम है, ऐसे क्षेत्रों में किसान भाई विशेष रूप से बरसात आने पर ग्वार, एक आप सभी लोग जानते हो ग्वार फली जो बाजार में उपलब्ध होती है, खाने के भी काम आती है, इसको भी हरे चारे के रूप में ले सकते हैं। इसका भी 30-35 क्विंटल बीज आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें, 30 सेंटीमीटर की बनी हुई लाइनों में बोएं और यदि आपके पास सिंचित क्षेत्र है तो इसको आप अभी भी बो सकते हैं। इसके अलावा एक राइस बीन आता है जो कि लोबिया की तरह ही होता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। आजकल और आप लोगों ने सुनी होगी ट्यूसिंटी आती है जो कि मक्के की तरह होती है, ये भी बहुवर्षीय चारे की फसल है, इसको आप लगा सकते हैं। यदि बीज आपका उपलब्ध है तो आप इसको लगा सकते हैं और इससे आप हरा चारा लें। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है जितने किसानों के पास पशु हैं उनके अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट देखें, खेत को आप तय करें कितना क्षेत्रफल में हमें चारा लगाना है जिससे उन्हें साल भर चारा मिलता रहे और खरीफ रबी और समर स्प्रिंग सीजन में चारे का अलग अलग फसलों उन्नत प्रजातियों को बोएं। मैंने आपको समर और खरीफ सीजन में बता दिया इन प्रजातियां जहां भी उपलब्ध होती हैं किसान भाई लें और उत्तम बीज का उपयोग करें जिससे आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी।
3: तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना डॉक्टर एम एस पाल जी को जिन्होंने आज आपको बताया, नेपियर घास के भी डॉक्टर साहब ने बात की, ग्वार की बात की, राइस बीन की बात की या ट्यूसिमटी की बात की, तो इनको आप किस तरह से चारे के रूप में आप इसको लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में और आपने किसान भाई को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपको सभी को धन्यवाद।
0: साथियों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता, अब वक्त हो चला है आपके मनोरंजन का। सुनते हैं ये लोकगीत।

साथियों, पर्यावरण प्रदूषण का कृषि पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करता है, फसलों की उत्पादकता को कम करता है, जल स्रोतों को दूषित कर सिंचाई को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण फसलों में कीटों और बीमारियों को भी बढ़ाता है। इससे खाद्य सुरक्षा और किसानों की आयु भी प्रभावित होती है। किसान साथियों, मृदा प्रदूषण रसायनों के उपयोग से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों और केंचुओं को मार देते हैं, जिससे मिट्टी मृत हो जाती है। रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो रही है। रसायनों और उर्वरकों को का रिसाव भूजल को जहरीला बना रहा है। प्रदूषित पानी से सिंचाई करने से फसलों की गुणवत्ता कई क्षेत्रों में गिरती रही है। फसलों के अवशेष जलाने से उत्पन्न धुएं से मिट्टी का जैविक कार्बन नष्ट हो रहा है और उत्पादकता भी घटती है। किसान साथियों, ये तापमान को भी प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण कीट पतंगों की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। साथियों, जैविक खेती को बढ़ावा देने से ही मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जैविक खेती करने पर हमारी फसलों को पानी की आवश्यकता भी कम रहती है। ऐसे में आकाशवाणी अपने सभी किसान भाइयों से अपील करती है कि अधिक से अधिक जैविक खेती अपनाएं और अच्छी उपज पाएं। साथियों, अब वक्त हो चला है आपके मनोरंजन का। सुनते हैं ये लोकगीत, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, कार्यक्रम में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपके पास खेतीबाड़ी से संबंधित कोई जानकारी है तो आप हमें पत्र जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन 248001। किसान साथियों, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है जगत कृषि@gmail.com। अब कुलदीप सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सायं के 7:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी प्रादेशिक समाचार दगड़ में कुसुम पिलखवाल। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून में 307 नवनियुक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटी और कह के नियुक्ति पत्र केवल रोजगार कागजात निछन बल्कि प्रदेशवासियों की सेवा प्रतिज्ञा पत्र ले छो। निर्वाचन आयोगल उत्तराखंड डगड़ी 16 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR 3rd चरण घोषणा ले करी। केंद्र सरकार को की देश में पेट्रोल डीजल LPG और प्राकृतिक गैसक पर्याप्त भंडार उपलब्ध छन और राज्य में चार धाम यात्रा पूर्व उत्साह डगड़ी जारी। 25 दिनों में 12

0: लगभग 60,000 हबीर सकर श्रद्धालु चार धामक दर्शन करी। अब समाचार विस्तारल सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में कुल 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटी, जिनमा 243 चिकित्सा अधिकारी, 42 फार्मासिस्ट तथा उद्यान विभाग अंतर्गत 22 प्रयोगशाला सहायक और मशरूम पर्यवेक्षक शामिल छन। यह अवसर पर मुख्यमंत्री कह के यह नियुक्ति पत्र केवल रोजगारक कागजात नहती बल्कि प्रदेशक 1.25 करोड़ जनता सेवा प्रतिज्ञा पत्र छो। उन्होंने नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने संवेदनशीलता, समर्पण और सेवा भावना दगर अपु दायित्व पालन करने अपील ले करी। मुख्यमंत्री को की राज्य सरकार कृषि और बागवानी के नई दिशा देने के लिए समर्पित छो। कीवी, ड्रैगन फ्रूट, डाइडेसेंटी एप्पल, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैस उच्च मूल्य वाली फसलों के बढ़ावा दिवे किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करी जाने। कृषि मंत्री गणेश जोशी को की उत्तराखंड मशरूम उत्पादनक अपार संभावनाएं छन। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन किसानों के लिए आयक अलावा ले स्रोत बन सकूं, जेल की उन्हें आर्थिक स्थिति मजबूत होल और सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में गुणात्मक सुधार आल। निर्वाचन आयोगल आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का तिहरा चरण ले घोषणा करी। यो चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीकल यो अभियान चलाई जल, जमे उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल छन। दगड़ी ही दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप केंद्र शासित प्रदेश ला इमे शामिल छन। केंद्र सरकार कौकी पश्चिम एशिया संकटक कारण कच्चे तेल, LPG और LNG आयात पर ले प्रभाव पड़ो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संयुक्त सचिव सुजाता सरमाल बता कि हालांकि सरकार स्थिति बटी निपटने के लिए प्रभावी कदम उठे हेली, जैक चलते देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस पर्याप्त भंडार उपलब्ध छी। उन्होंने बता की रिफाइनरियों अपू अधिकतम क्षमता पर काम कर नहीं और LPG उत्पादन मेले वृद्धि करी जरे। वर्तमान में देश में कुल रिटेल आउटलेट या LPG वितरक केंद्र पर आपूर्ति बाधित होने या स्टॉक खत्म हो जैस कुल स्थिति नीचो।
1: हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही डोमेस्टिक PNG और CNG ट्रांसपोर्ट की भी 100% अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वास्तविक आधार में अप्रैल महीने में 42 महीनों उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गो। पिछले साल मार्च में यह 3.88% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूपल खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने का कारण है।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर यू समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: चार धाम यात्रा पूर उत्साह दगर जारी छू। पिछल 25 दिनों में ही दर्शनार्थियों गिनती 12,60,000 आंकड़क के पार कर हेलो। केदारनाथ यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह छू। 22 दिनों में 5,30,000 हबीर सकर तीर्थयात्रियों श्री केदारनाथ धाम में शीश नवे हेली। बद्रीनाथ में 3,24,000, गंगोत्री में 2,05,000 और श्री यमुनोत्री धाम में 2,07,000 तीर्थयात्री पहुंचे। केदारनाथ धाम में पंजाबक रोपड़ बटी आई श्रद्धालु दिवाकरल बता की यात्रा मार्ग पर प्रशासनिक टीम हर वक्त सहायता के लिए तैयार छो और दर्शन बहुत ही भल तरीकल हुनई।
3: अमरनाथ की यात्रा के लिए पैदल चलना शुरू किया और बड़े प्रेम से हम यहाँ आए हैं। थोड़ा मौसम बीच में ऐसा रहा जिससे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन भगवान भोलेनाथ का नाम लेते लेते हम यहाँ पे बड़े आराम से पहुंचे और बहुत अच्छे हमारे दर्शन यहाँ पे हो गए हैं। और शासन प्रशासन का यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरफ से खाने से पीने से और स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीजें हैं सबको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। किसी प्रकार के कोई किसी को समस्या नहीं आ रही। पुलिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, जितने भी मित्र पुलिस है सबका साथ अच्छे से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल आता हूँ वैसे, पर इस साल व्यवस्थाएं कुछ ज्यादा अच्छी हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को की चार धाम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सरकारक सबे हबे ठूल प्राथमिकता छो। श्रद्धालु सुगम ताल दर्शन कर सको ये लीजिए स्लॉट प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण प्रणाली के प्रभावी बनाई जरो। नशा मुक्त भारत अभियानक अंतर्गत अल्मड़ा पुलिसक ओर बटी जेल मा जागरूकता अभियान चलाई जानो। ये एक अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, मेडिकल कॉलेजों, विद्यालय और महाविद्यालयों मा पुलिस जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ज्यादा हबी ज्यादा छात्र छात्राओं और लोगों के नशक बुर परिणामों के लिए भी जागरूक करीने यो काम मा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर मा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगो। पुलिस उपाधीक्षक बलवंत सिंह रावतल बता कि पुलिस मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई करने

0: माध्यम से हम लोग जैसे डीएफओ वहाँ पे सदस्य सचिव होते हैं तो वहाँ पे भी इसको हाईलाइट करके तो इसी क्रम में हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको और सुचारू बनाया जा सकता है।
1: आखिमा मुख्य समाचार आई सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून में 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटी और कह की नियुक्ति पत्र केवल रोजगारक कागजात निछन बल्कि प्रदेशवासियों सेवक प्रतिज्ञा पत्र ले छो। निर्वाचन आयोग उत्तराखंड दगड़ी 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIRक 3 चरणक घोषणा ले करी। केंद्र सरकार को की देश में पेट्रोल डीजल LPG और प्राकृतिक गैसक पर्याप्त भंडार उपलब्ध छी और राज्य में चार धाम यात्रा पूर्व उत्साह दगर जारी। 25 दिनों में 12,60,000 हबीर सकर श्रद्धालुओं चार धामक दर्शन करी। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों यो अंक इति के समाप्त हूँ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सायं के 7:40 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का पहला गीत आन बान फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

श्रोताओं, अप्रैल फूल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सायं के 7:50 हुए हैं। प्रस्तुत है क्षेत्रीय एकांश देहरादून की विशेष प्रस्तुति उम्मीद की किरण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार देहरादून के विशेष सकारात्मक कार्यक्रम उम्मीद की किरण में मैं योशिता पांडे आपका स्वागत करती हूं। उत्तराखंड के गांव अब केवल संघर्ष की कहानियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यहां आत्मनिर्भरता, मेहनत और बदलाव की नई मिसालें भी गढ़ी जा रही हैं। कहीं एक युवा डेयरी व्यवसाय के जरिए गांव में ही रोजगार का मजबूत मॉडल तैयार कर रहा है, तो कहीं महिलाएं प्रशिक्षण लेकर अपने गांवों के विकास का संकल्प ले रही हैं और कहीं पहाड़ की एक महिला अपने हुनर से परिवार की आर्थिक ताकत बनकर उभर रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे ही तीन प्रेरक कहानियों से रूबरू कराएंगे जो बताती हैं कि जब मेहनत और सरकारी योजनाओं का साथ मिलता है तो उम्मीद की नई किरण जरूर दिखाई देती है। सबसे पहले चलते हैं पौड़ी गढ़वाल, जहां एक युवा ने गांव में रहकर ही सफलता की नई पहचान बनाई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं के लिए उम्मीद का मजबूत आधार बन रही है। पौड़ी गढ़वाल के केवर्स गांव निवासी राहुल गोसाई ने इस योजना का लाभ उठाकर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि गांव में रोजगार के नए अवसर भी तैयार किए हैं। राहुल ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 7 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की। शुरुआत केवल 5 गायों से हुई, लेकिन मेहनत और लगातार प्रयासों ने इस छोटे से काम को आज एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन्होंने 2 और गायें खरीदी, जबकि मुख्यमंत्री राज्य पशु मिशन योजना के तहत 4 अतिरिक्त गायों को शामिल किया गया। वर्तमान में उनके पास जर्सी, साहिवाल, गीर, बद्री और HF नस्ल की कुल 24 गायें हैं। आज राहुल प्रतिदिन लगभग 150 से 170 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें से 32 से 40 लीटर दूध राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रयास स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है। लगभग 50 लीटर दूध आंचल डेयरी को उपलब्ध कराया जाता है, जबकि शेष दूध स्थानीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण दूध और नियमित आपूर्ति के कारण उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। दूध बिक्री से राहुल को हर महीने लगभग 80 से 90 हजार रुपए की आय हो रही है, जिसमें 45 से 50 हजार रुपए तक शुद्ध लाभ शामिल है। राहुल कहते हैं कि सरकारी योजनाओं से मिला सहयोग उनके लिए नई शुरुआत साबित हुआ।
3: नमस्कार, मेरा नाम राहुल गोसाई और मैं किवर्स में हूँ अभी। और किवर्स में मैंने अपनी एक डेयरी स्टार्ट करी है और डेयरी के माध्यम से मेरा भी दूध आंचल में भी जा रहा है। कभी 60 लीटर, कभी 50, कभी 70 के हिसाब से दूध हो रहा है। और हमारा मेन फायदा ये है कि हमें आंचल के माध्यम से साइलेज और भूसा और दवाई जो अनुदान के उस पर मिल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार से भी लाभ उठाया, किसान क्रेडिट कार्ड उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से भी मैंने इसका लाभ उठाया है। पहले मेरी 5 गाय थी, 5 से मेरी 7 भी, 7 के बाद ये 23-24 हैं। इसमें से कुछ गायें मेरी 12वीं चलने जा रही है और मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो सरकार हम किसानों के लिए बेहतर कार्य कर रही है और दिन पर दिन कार्य करते जा रही है।
2: मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल शर्मा का कहना है कि पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग पशुपालकों को स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और संतुलित आहार संबंधी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध करा रहा है। राहुल गोसाई की सफलता आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है जो गांव में रहकर ही रोजगार और सम्मानजनक आय के अवसर तलाशना चाहते हैं। उत्तराखंड की महिलाएं अब केवल परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं संभाल रही बल्कि गांवों के विकास की नई दिशा भी तय कर रही हैं। देहरादून में आयोजित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी बदलती तस्वीर को

0: मजबूत आधार दे रहा है। देहरादून का विकास भवन इन दिनों नारी शक्ति के आत्मविश्वास और स्वावलंबन का सशक्त केंद्र बना हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत आयोजित 3 दिवसीय क्लस्टर लेवल फेडरेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 6 विकास खंडों की महिलाओं ने उत्साह के साथ भागीदारी की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक कार्य योजना यानी एनुअल एक्शन प्लान को तैयार करना रहा। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने न सिर्फ अपनी योजनाओं और अनुभवों को साझा किया बल्कि अपने क्लस्टरों को मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित करने का संकल्प भी लिया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन, आजीविका संवर्धन और सामुदायिक नेतृत्व से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। मास्टर ट्रेनर्स ने डेटा अपडेटेशन और डॉक्यूमेंटेशन जैसी प्रक्रियाओं को बेहद सरल और व्यवहारिक तरीके से समझाया। यह पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उस सोच को आगे बढ़ा रही है जिसमें गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब लक्ष्य केवल योजनाओं का संचालन नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह धरातल पर उतार कर ग्रामीण विकास की मजबूत नींव तैयार करना है।
1: हमारे को यहाँ पे 3 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट प्लान के

साफ संकेत देता है कि उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं अब विकास की सहभागी ही नहीं बल्कि उसकी मजबूत नेतृत्वकर्ता भी बन रही हैं। और अब बात चमोली जिले की ऐसी महिला की जिन्होंने अपने हुनर और मेहनत के दम पर स्वरोजगार की नई पहचान बनाई है। देवभूमि उत्तराखंड में अब महिलाओं के सपने केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित ग्राम उत्थान परियोजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई राह तैयार कर रही है। चमोली जिले के दशोली ब्लॉक के खैनूरी गांव की बबीता देवी इसकी प्रेरक मिसाल बनकर सामने आई हैं। बबीता देवी ने ग्राम उत्थान परियोजना के सहयोग से फर्नीचर निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। वर्ष 2023-24 में उन्हें 22,500 रुपए का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने बैंक ऋण और अपनी जमा पूंजी को जोड़कर अपने पति के साथ फर्नीचर व्यवसाय शुरू किया। मेहनत और लगन का परिणाम यह रहा कि आज बबीता देवी हर महीने लगभग 20,000 रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि यदि सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिले और उसके साथ

0: दिखाती कुछ प्रेरक कहानियां जहां मेहनत, आत्मविश्वास और सरकारी योजनाओं का सहयोग मिलकर गांवों में विकास की नई रोशनी फैला रही हैं। उम्मीद की किरण में आज बस इतना ही। मैं योशिता पांडे अब आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय एकांश देहरादून की विशेष प्रस्तुति उम्मीद की किरण। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर कल 13 मई 2026 को शाम 4 बजे दून पुस्तकालय सभागार में आयोजित शास्त्रीय संगीत एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर है प्रियंका जैना का और प्रस्तुति होगी रमेश चंद्रा की। समय याद रखिएगा आज रात्रि 8:15 पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चेतन शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत। बातचीत का विषय है उच्च रक्तचाप और हृदय रोग।
2: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर चेतन शर्मा को। आप वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे हाइपरटेंशन लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। डॉक्टर चेतन शर्मा, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है।
3: अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो आम भाषा में इसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हम लोगों का है उसका रेंज 90/60 से लेके 140/90 तक है। इस रेंज के अंदर जो भी ब्लड प्रेशर रहता है उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर इससे ऊपर जाता है 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि इस मरीज को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है।
2: जी डॉक्टर साहब, क्या हाइपरटेंशन के कुछ प्रकार भी होते हैं?
3: हाइपरटेंशन पर से सर हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे कि एक रीडिंग 140/90 पर अगर वो यंग बंदों में होता है तो हम उसको यंग हाइपरटेंशन बोलते हैं, अगर वो प्रेगनेंसी में होता है तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, और अगर गुर्दे की बीमारी करके होता है तो गुर्दे की बीमारी रीनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका लेबलिंग हम स्पेसिफिकली एज और सर्कमस्टेंशियल करते हैं।
2: जी डॉक्टर चेतन शर्मा जी, क्या हाइपरटेंशन के कुछ लक्षण भी अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसमें दिखाई देंगे?
3: नॉर्मल तौर पे ब्लड प्रेशर जब भी किसी को होता है तो क्या महसूस क्या होता है? यूजुअल तौर पे थकावट, किसी को सिर दुखता है, सिर दर्द होती है, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं हार्ट के अंदर
2: जी।
3: पर ज़्यादातर ब्लड प्रेशर रूटीन के अंदर ही आइडेंटिफाई होता है। जब आप रूटीन एग्जामिनेशन करवाते हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है, तब हम उसको लेबल करते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है।
2: जी डॉक्टर साहब, क्या अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके हाथ पैर कांपना और अजीब अजीब सा फील होना कि मैं अभी गिर जाऊंगा, इस तरह का भी फील हो सकता
3: ऐसा
2: है?
3: ऐसा है, फटीग है, आंखों के आगे अंधेरा, या जिसको प्री सिंकोप बोलते हैं कि भी आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है। हाँ, अगर हाइपरटेंशन की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए हाई ब्लड प्रेशर करके, तो ये सिम्टम जो आपने बताए हैं वो हो सकते हैं। पर से नॉर्मल बंदे में जो नॉर्मल एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर यूजुअल तौर पे हेडेक, फैटीग या पेल्पिटेशन या अनइजीनेस, ये सिम्टम्स हैं जिन करके हम ब्लड प्रेशर,
2: घबराहट या बेचैनी कहते हैं जिसे।
3: हाँ जी, हाँ
2: जी। डॉक्टर चेतन शर्मा जी, कारण क्या है हाइपरटेंशन के?
3: देखिए, अगर आप हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर के तो 90% केसेस में तो इसको इडियोपैथिक बोलते हैं, जब जिसका कोई कारण नहीं होता
2: जी।
3: 10% केसेस में ब्लड प्रेशर के कारण हो सकते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या गुर्दे में कुछ नाड़ी ब्लॉक है, या कोई ट्यूमर है, तो इन चीज़ों के करके ब्लड प्रेशर होता, पर उनकी संख्या लगभग 10% है। 90% को ब्लड प्रेशर, जिसको हम एज

0: रिलेटेड या बिना इडियोपैथिक बोलते हैं वैसा होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन के कारण क्या व्यक्ति को अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं?
0: देखिए, हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी के लिए, जिसको हम कॉरोनरी हार्ट डिजीज बोलते हैं, या स्ट्रोक,
1: जी
0: अधरंग बोलते हैं,
1: जी
0: या किडनी फेलियर, गुर्दा फेल होना। तो हाइपरटेंशन के इफेक्ट्स के अंदर ये बीमारियां हो सकती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट में भी उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सिचुएशन बनेगी कब? ऐसी स्थिति में व्यक्ति कब पहुंचेगा?
0: नॉर्मल तौर पे अगर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल प्रॉपर नहीं है और ब्लड प्रेशर की ड्यूरेशन लंबी है और ब्लड प्रेशर के लिए वो इलाज नहीं कर रहा,
1: जी
0: डाइटरी कंट्रोल नहीं है, लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन अचानक और अक्सर हो जाती है।
1: जी क्या किसी भी उम्र का व्यक्ति है उसमें ये समस्याएं, जैसे स्ट्रोक है, किडनी डिजीज है, हार्ट की बीमारी का बढ़ जाना हो सकता है?
0: ये बीमारियां किसी भी एज में हो सकती हैं सर, और ब्लड प्रेशर यंग लोगों में भी होता है, जिसको हम यंग हाइपरटेंशन बोलते हैं।
1: जी
0: तो इनके करके इफेक्ट होना ये भी जायज होता है सर ऐसा।
1: जी डॉक्टर चेतन शर्मा जी, अगर आज के समय में देखें तो हमारे देश का जो युवा है वो भी हाइपरटेंशन से बहुत ज्यादा ग्रसित है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं?
0: देखिए, यंग हाइपरटेंशन और जो यंग लोगों में ब्लड प्रेशर होता है, उसके अंदर डाइटरी पैटर्न, सॉल्ट की इंटेक ज़्यादा, फास्ट फूड की इंटेक ज़्यादा, लाइफस्टाइल अग्रेसिव, और कुछ लोगों में तो सिगरेट स्मोकिंग या ड्रग का सेवन,
1: जी
0: इनके करके हाई ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया गया है।
1: जी और आपने जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनकी बात की, उनमें क्या वजह होती है हाइपरटेंशन के
0: देखो,
1: पीछे?
0: प्रेगनेंसी में या तो हाइपरटेंशन पहले लेडी को होता है, वो प्रेग्नेंट होती है और फिर पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है, जब वो डॉक्टर उसकी प्रेगनेंसी की जांच करता है,
1: जी
0: या फिर फोर्थ मंथ के बाद प्रेगनेंसी के कारण भी ब्लड प्रेशर होता है, उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये दोनों कारण है, पहले भी हो सकता है जिसका पता प्रेगनेंसी के दौरान चला, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड प्रेशर हो सकता
1: जी क्या उससे जो होने वाला बच्चा है उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा?
0: है। बिल्कुल फर्क पड़ता है सर, ब्लड प्रेशर को हम लोग डॉक्टर बोलते हैं कि आप उसको मेटिकुलसली कंट्रोल कीजिए ताकि बच्चे पे असर ना पड़े।
1: जी क्या करना चाहिए जो पेशेंट है, जो गर्भवती माँ है उसे?
0: उनको अपना डॉक्टर को दिखा के ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना चाहिए और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए। उसके लिए दवाइयाँ भी बनी हैं, नमक का सेवन कम करते हैं, प्रेगनेंसी के लिए जो भी सलाह गायनेकोलॉजिस्ट देती है, ऑब्स्टेट्रिशियन देती है, उसको मानना चाहिए।
1: जी डॉक्टर चेतन शर्मा जी, क्या कुछ जांचें भी हैं हाइपरटेंशन से ग्रसित व्यक्ति के लिए?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए पर से जो टारगेट ऑर्गन डैमेज है, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर की जांच क्या है, हर एक बंदे को हर ईयरली 20 साल के बाद अपनी जांच करवानी चाहिए ताकि पता चल सके उसको ब्लड प्रेशर है या नहीं। ये
1: जी
0: तो पहली जांच है।
1: जी
0: और सेकंड जांच है कि अगर वो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आँखों के लिए टारगेट ऑर्गन डैमेज है, जिस पे फंडस का एग्जामिनेशन होता है, हार्ट के लिए जांचें हैं जैसे ECG इको होती है,
1: जी
0: किडनी के लिए जांचें हैं, और यूरिन की जांचें हैं जिसमें प्रोटीन लीक होता है। तो ये सारी जांचें हैं जो डॉक्टर आपको, फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करता है, उन जांचों को सीरियसली करवाना चाहिए।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हमारे देश की बात करें तो इस तरह का चलन तो बहुत कम देखने में आता है कि लोग 20 साल की उम्र के बाद अपनी इस तरह की जांचें जो आपने बताई करवाते हों।
0: देखिए सर, एडवाइस तो ये, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, एडवाइस तो ये है कि सर 20 साल के बाद एवरी ईयरली हमें इन चीज़ों की जांच करवानी चाहिए ताकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, लाइफ के स्टाइल के साथ आती हैं,
1: जी
0: इनसे बचा जा सके।
1: जी डॉक्टर साहब, व्यक्ति अगर हाइपरटेंशन से ग्रसित है उसका उपचार क्या है?
0: देखिए, हम इसको ट्राइपॉड बोलते हैं, डाइट, लाइफस्टाइल और दवाइयाँ।
1: जी
0: जब डाइट का कंट्रोल करना चाहिए, उसके अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे,
1: जी
0: लाइफस्टाइल में व्यायाम डिस्कस करेंगे, और उनके बावजूद अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो उनको दवाइयाँ लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए,
1: जी
0: दवाइयाँ लेनी चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर का रेंज नॉर्मल रहे।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो एक चलन सामान्य है, आप विशेषज्ञ हैं तो देखा ही होगा कि लोग एक बार हाइपरटेंशन या किसी भी बीमारी की डॉक्टर से दवाएं लिखवा लेते हैं और फिर वही दवाएं अपनी मर्जी से कंटिन्यू बनाए रखते हैं।
0: ये मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर का जांच करवाएं, और डाइट, लाइफस्टाइल,

0: और जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है उसके मुताबिक टाइम टू टाइम दवाइयों का सेवन करें। दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है, दवाइयाँ छोड़नी नहीं है जब तक कि डाइट और लाइफस्टाइल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो जाता।
1: डॉक्टर शर्मा, बचाव क्या है हाइपरटेंशन से?
0: देखिए, अभी हमने डिस्कस किया डाइट और लाइफस्टाइल,
1: जी
0: ये दो पिलर हैं, अगर हम ऑनेस्टली इनका फॉलोअप कर लें तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है।
1: जी
0: जब हम डाइट की बात करते हैं तो इसमें सॉल्ट इनटेक की बात करते हैं कि नमक का सेवन कम करना चाहिए।
1: जी
0: एक दिन के अंदर
1: जी
0: हम कन्वेंशनली जो रिकमेंडेशन है कि 2.5 ग्राम से कम सॉल्ट लेना चाहिए,
1: जी
0: और नमक और तली हुई चीज़ें,
1: जी
0: और जिनमें सॉल्ट ज़्यादा होता है जैसे प्रिजर्वेटिव फूड हैं, ड्रिंक्स हैं,
1: अचार हो गया,
0: अचार हो गया, इन सारी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है तो रेगुलर व्यायाम,
1: जी
0: सैर, रेगुलर एक्सरसाइजेस की रिकमेंडेशन है, और अगर नहीं कर सकते तो आजकल रिकमेंडेशन है 4400 से लेके 7500 स्टेप्स पर डे।
1: जी
0: अगर कोई यंग बंदा है तो 10,000 स्टेप्स तक भी 24 आवर में कर सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ देखने में आता है खास तौर से लड़कियों में, यंग लड़कियों में भी, कि चिप्स खाने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, और कहा यह जाता है कि चिप्स में बहुत बड़ी मात्रा में सॉल्ट होता है। क्या ये आदत उनकी आगे जाकर हाइपरटेंशन के लिए जिम्मेदार हो सकती है?
0: देखिए सर, जितने भी फास्ट फूड हैं उनके अंदर सॉल्ट की मात्रा बहुत होती है, और एक्सेसिव सॉल्ट की मात्रा रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर का। इंडिया के अंदर जो भी ब्लड प्रेशर है वो सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है,
1: जी
0: तो जितना नमक खाएंगे उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर नमक का सेवन कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी बेहतर होगा।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने प्राणायाम की बात की थी, कितने समय तक प्राणायाम किया
0: देखिए,
1: जाना
0: हम लोग
1: चाहिए?
0: बोलते हैं मेडिटेशन और जो भी योगिक एक्सरसाइजेस हैं ये सिंपैथेटिक ड्राइव को कम करती, बॉडी के अंदर जो अग्रेसिव बिहेवियर है
1: जी
0: या जो सिंपैथेटिक सिस्टम है जिससे अग्रेसिव बिहेवियर आता है, अगर उसको हम कंट्रोल कर लें तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो सकता है।
1: जी
0: चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस हो, जिनसे बॉडी के अंदर कामनेस आए वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक आम धारणा हमारे समाज में ये है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो लोग कहते हैं नमक थोड़ा बढ़ा दो, और अगर ज़्यादा है तो कहते हैं नमक घटा लो। डॉक्टर की बिना राय के ये सब करना कितना खतरनाक है?
0: बिना राय के डॉक्टर की ब्लड प्रेशर या और भी कोई लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं उनको है अपने आप हैंडल नहीं करना चाहिए, एक विशेषज्ञ की राय से ही इस चीज़ को मानना चाहिए। डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि ब्लड प्रेशर में क्या क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, क्या दवाइयाँ लेनी हैं। जहाँ तक बात रही कि लो ब्लड प्रेशर में नमक देने का, ये साइंटिफिक रीज़न फिजिशियन डिसाइड करना चाहिए, ये आम जन को डिसाइड नहीं करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे देश में देखा जाता है कि विशेषज्ञ डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले लोग पता नहीं कहाँ का झाड़ फूंक वाला और इस तरह के तमाम लोगों के पास घूम आते हैं, कितना खतरनाक हो सकता है उन लोगों के लिए
0: देखिए
1: ये?
0: सर, जो हमारी रिकमेंडेशन है कि चाहे वो जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको ही दिखाना चाहिए जिसको इस बीमारी का नॉलेज हो, जो आपको डाइट, लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर और उसकी दवाइयाँ और उससे होने वाले खतरों के लिए आगाह कर सके।
1: डॉक्टर चेतन शर्मा जी, कोई ऐसे 3 टिप्स हमारे श्रोताओं को आप क्या देना चाहेंगे कि अगर वो स्वस्थ हैं तो हाइपरटेंशन से बचे रहें?
0: देखिए, सबसे पहला तो ये है कि रेगुलर अगर हम गाड़ी की सर्विस रेगुलर करते हैं तो हमें बॉडी की सर्विस भी रेगुलर करनी चाहिए।
1: जी
0: तो इसी तरीके इसका कहने का तात्पर्य ये कि हमें रेगुलरली अपने फिजिशियन को चेक करवाना चाहिए, पहली बात। सेकंड बात, उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको सीरियसली फॉलो करना चाहिए। तीसरी बात, डाइट, लाइफस्टाइल और दवाइयाँ,
1: जी
0: इनके कॉम्बिनेशन के साथ जो भी आपको आपका फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट सलाह देता है मानकर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर चेतन शर्मा जी, हमारे देश में क्या स्थिति देखते हैं आज के समय हाइपरटेंशन से ग्रसित जो रोगी हैं, लोग हैं उनकी?
0: कॉमन इसको लाइफस्टाइल भी बीमारियां कहते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, इनसे मरने वालों की गिनती इन्फेक्शियस डिजीज़ों से मरने वालों की गिनती से ज़्यादा हो गई है।
1: जी
0: तो अगर हमने उत्तराखंड में इसकी स्टडी की थी तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 से 35% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी मिली।
1: जी
0: तो इसकी परसेंटेज ऑफ हाइपरटेंशन यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है और

0: पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है।
1: जी, कोई ऐसे सुझाव जो दें ताकि हमारी जो उत्तराखंड के देश की जो पॉपुलेशन है, देश के जो लोग हैं, वो स्वस्थ रहें और हाइपरटेंशन से बचे रहें।
0: देखिए सर, डाइट पे कंट्रोल कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और अगर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चाहिए तो रेगुलरली दवाई खाएं, और अपने आप डॉक्टरी ना करें, रेगुलरली फॉलो अप करके डॉक्टरों से उसकी सलाह के मुताबिक ही अपना इलाज करें। और जिनको हाइपरटेंशन नहीं भी है उन लोगों को भी रेगुलरली एक साल में एक बार अपनी जांच करवानी चाहिए, ताकि इन हाइपरटेंशन और जानलेवा और दूसरी लाइफस्टाइल बीमारियों से बचा जा सके।
1: जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हाइपरटेंशन लक्षण, कारण और उपचार विषय पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें विश्वास है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे जो श्रोता हैं निश्चय ही लाभान्वित होंगे। जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भेंट वार्ता डॉक्टर चेतन शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत। विषय था उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर कल 13 मई 2026 को शाम 4 बजे दून पुस्तकालय सभागार में आयोजित शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर है प्रियंका जैना का और प्रस्तुति है रमेश चंद्रा की।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर कल 13 मई शाम 4 बजे देहरादून के दून लाइब्रेरी में आयोजित शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या के भव्य आयोजन की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति रमेश चंद्रा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल 13 मई को देहरादून के दून लाइब्रेरी में शाम 4 बजे शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या का भव्य आयोजन किया गया। संगीत और सुरों से सजी इस संध्या ने श्रोताओं को भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद रागों की गंभीरता और उपशास्त्रीय संगीत की मधुरता ने उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कहीं बंदिशों की गूंज सुनाई दी तो कहीं ठुमरी व दादर गायन और मधुर संतूर वादन की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया।
1: आकाशवाणी देहरादून द्वारा दिनांक 13 मई 2026 को शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है, इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आकाशवाणी देहरादून द्वारा शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या आयोजित की जा रही है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है दीप प्रज्वलन से। अग्नि को साक्षी मानकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
0: दूरदर्शन उत्तराखंड के उपनिदेशक कुलभूषण कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम संबंधी अपने विचार साझा किए।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ ही जो हमारी इस आकाशवाणी की श्रोतागण है, जो जिनके माध्यम से हम आकाशवाणी के माध्यम से आपस में परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, उनका भी सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आकाशवाणी की परंपरा जो है संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति और जो हमारी लोक पद्धति है शास्त्रीय संगीत की, जो हमें एक सुकून देती है, उसके लिए आप श्रोतागण उनका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। और इसकी प्रस्तुति कलाकार करेंगे, उनका आप उत्साहवर्धन करेंगे। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर दून पुस्तकालय सभागार में आयोजित शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में हमारे

0: साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे मुख्य अतिथि हेमंत बी आड़े, निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून से। जानते हैं इन्होंने क्या कहा कार्यक्रम को लेकर।
1: स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी की भूमिका अतुलनीय रही है। 90 वर्षों की यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। आकाशवाणी ने हमारी संगीत की विरासत को पुष्पित, पल्लवित और संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी द्वारा आयोजित संगीत कार्यक्रम केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। संगीत मन को शांति ही नहीं बल्कि जीवन को नई ऊर्जा भी प्रदान करता है।
0: तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री आर के बनवारी, उपनिदेशक जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड से उपस्थित रहे। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: इस तरह के आयोजन लोगों में संगीत के प्रति जागरूकता करने, संस्कृति और संगीत से जुड़े रखने में मददगार साबित हो रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमने 80s में जब शुरू किया था, बचपन में जब खेलते थे या हम सुनते थे, तो हमारे पास सिर्फ मनोरंजन का साधन सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी था, जिसमें हम लोग गाने सुनते थे। और दर्शकों को ये पता भी नहीं होगा, उस समय मूवीज पिक्चर जो है हम संडे को वेट करते थे कि भाई संडे को कब मूवी आएगी और हम सुनेंगे। जिस तरीके से पूरे देश को एकत्र किया हुआ है आकाशवाणी ने लगातार 90 सालों से, उसके लिए उनको बहुत बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। धन्यवाद।
3: देहरादून के एक सांगीतिक परिवार में जन्मी युवा कलाकार कुमारी शरण्या जोशी, मात्र 3 वर्ष की उम्र में गायन के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा। अपनी माता श्रीमती नीलू जोशी एवं पिता श्री असीम जोशी की अनुप्रेरणा से वो अपनी दादी स्वर्गीय श्रीमती विनोद जोशी की देखरेख में शरण्या ने गायन के माध्यम से आगे बढ़ती रही। 5 वर्ष की उम्र से लेकर अभी तक देहरादून के प्रसिद्ध संगीत शिक्षक श्री उत्पल सामंत जी से शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत के लिए बारीकियां सीखी। शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत में आपने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें प्रमुख है आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता, सुर कला संगम, क्लासिकल वर्ड्स ऑफ इंडिया आदि। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम दर्जे में उत्तीर्ण हुई और वर्तमान में आप आकाशवाणी में शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत की बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। संगीत जगत के जाने माने कलाकार पंडित राजन साजन मिश्र, पंडित स्वप्न चौधरी, पंडित अरिंद चटर्जी, पंडित बीजू महाराज, सोनू निगम आदि के सम्मुख अपनी प्रस्तुति देकर इन्होंने प्रशंसा प्राप्त की है। अनेक शहरों में आपने प्रस्तुति दी है, जिनमें कोलकाता, चंडीगढ़, पंजाब, मुंबई, लखनऊ आदि प्रमुख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग खमाज पर आधारित ठुमरे, राग मिश्र पीलू पर आधारित दादरा एवं राग पहाड़ी झिझोटी पर आधारित चैती। आकाशवाणी की ए ग्रेड तबला वादक श्री प्रदीप डे की संगीत की यात्रा मात्र 6 वर्ष की उम्र में कोलकाता की सलाम धन्य तबला वादक एवं शिक्षक पंडित कानाई दत्त के शिष्य पंडित काशीनाथ चक्रवर्ती के मार्गदर्शन से शुरू हुई। सन 1990 से कोलकाता के सुप्रसिद्ध तबला शिक्षक पद्म भूषण पंडित ज्ञान प्रकाश घोष के शिष्य पंडित गोविंद घोष जी के सानिध्य में तबले की आपने बारीकियां सीखी। आपने देश के विभिन्न मंच पर एकल वादन के साथ साथ सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका विदुषी शिप्रा गुहा, सितार वादक स्वर्गीय पंडित सौमित्र लाहिड़ी, सुप्रसिद्ध ख्याल गायक पंडित राजन मिश्र एवं पंडित साजन मिश्र, ख्याल गायक उस्ताद रजा अली खान आदि के साथ तबले की संगत की है। साथ में हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शरण्या जोशी के साथ संगत कर रहे हैं माहिर अहमद। अल्पायु से ही पिता श्री मुन्ने खान से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी की ए ग्रेड ख्याल गायक श्री ऋत्विज पंत के देखरेख में आपने गायन के क्षेत्र में श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। गायन के अतिरिक्त ऋषिकेश के पंकज सुहास से तबले की शिक्षा प्राप्त की। आपने गायन, तबले के अतिरिक्त क्लोरिनेट, सैक्सोफोन, बांसुरी और हारमोनियम वादन में भी महारत हासिल की है। हारमोनियम वादन में आप आकाशवाणी की विदेश कलाकार हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का हम आगाज करने जा रहे हैं और आज की हमारे शास्त्रीय गायन की कलाकार हैं शरण्या जोशी।
4: आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, रॉबिन सर को, सर को हमारे सर बैठे हैं यहाँ पे, और आप सबसे ही इजाजत लेते हुए मैं आज गाना प्रस्तुत करूँगी खमाज में ठुमरी, जो मेरे गुरुजी ने कंपोज करी है और आशा करके हम सबको पसंद आए। धन्यवाद।

0: शरण्य जोशी ने उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ठुमरी और दादरा की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उनकी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अभी आपने जिनकी प्रस्तुति सुनी, हमारे साथ है शरण्य जोशी। जानते हैं उनसे किस प्रकार का अनुभव रहा उनका।
1: मेरा बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, खासकर कि जो मेरे साथ तबले पे थे, मेरे साथ हारमोनियम पे थे, तानपुरे पे थे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज, क्योंकि मैं देहरादून से हूँ और देहरादून में प्रोग्राम करना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी गर्व की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी तरह से हमारी भारत की शान रही है रेडियो स्टेशन, और आगे चल के भी इस तरह से ही शान बरकरार रहे। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस।
2: तो कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर पार्थ राय चौधरी से संतूर वादन, और आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर प्रदीप्त देव।

पार्थ रॉय चौधरी ने संतूर वादन से वातावरण को सौम्य बना दिया। संतूर की मधुर ध्वनि ने पूरे सभागार में एक अलग ही संगीतात्मक अनुभूति पैदा की। संगीत कलाकार के रूप में प्रदीप डे ने तबले पर और माहिर अहमद ने हारमोनियम पर संगत किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आकाशवाणी ने अपने 90 वर्षों के सफर में भारतीय संगीत, संस्कृति और साहित्य को जन जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी रेडियो लोगों की भावनाओं और संस्कारों से जुड़ा एक विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों और शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया तथा कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की। और इसी के साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर कल 13 मई शाम 4 बजे देहरादून के दून लाइब्रेरी में आयोजित शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या के भव्य आयोजन की रेडियो रिपोर्ट यहीं सम्पन्न होती है। अब मुझे यानी प्रियंका जैना को दीजिए अनुमति।

0: नमस्कार,
1: अभी आप सुन रहे थे
0: ये आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर कल 13 मई शाम 4 बजे देहरादून के दून लाइब्रेरी में आयोजित शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या के भव्य आयोजन की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर प्रियंका जैना का, प्रस्तुति रमेश चंद्रा।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर कल 13 मई 2026 को शाम 4 बजे दून पुस्तकालय सभागार में आयोजित शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर था प्रियंका जैना का और प्रस्तुति रमेश चंद्रा की। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल

0: न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
1: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
2: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
1: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक

0: अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today. Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global

श्रोताओं, आनंद आश्रम फिल्म में अभी आप आशा भोसले और किशोर कुमार को सुन रहे थे। इंदिवर के बोल थे और श्यामल मित्रा का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत तुम्हारे लिए फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में नक्शलालपुरी के बोल और जयदेव का संगीत। तुमको हर बार नई नजर से देखा है हमने, तुमको हर बार नई नजर से देखा है हमने, हमको हर बार नया इश्क हुआ है तुमसे।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला गीत मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब मिले तो मिलकर चार हुए, ये अपनी अपनी किस्मत है, दो जीत गए दो हार गए।

0: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में यादगार फिल्म का गीत, शब्द रचना इंदिवर की और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने। तुम्हारी राहों में खुशियों के फूल सजाने दो, मेरे सपनों को अपने संग मुस्कुराने दो, जिस पथ पर चलो तुम जीवन भर, उस पथ पर मुझे अपना आंचल सजाने दो। सुनो, मुझे तुम अपनी राहों में फूल सजाने दो।
1: पथ पे चला उस पथ

श्रोताओ, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हरजाई फिल्म से हमने लिया है। आवाज एक बार फिर से लता मंगेशकर की, निदा फाजली के बोल और आर डी बर्मन का संगीत। जब तुम आए मेरे हिस्से में मुझे यकीन नहीं आया, जब तुम आए मेरे हिस्से में मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि कभी मेरे हिस्से में कुछ इतना हंसी नहीं आया।

और अब आज के कार्यक्रम का समापन गीत आंगन की कली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल और पप्पी लहरी का संगीत। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगे, हर खुशी में भी नमी सी लगे, तुम साथ हो तो सब ठीक है, वरना जिंदगी भी आधी अधूरी सी लगे।

लता मंगेशकर के गाए आंगन की गली फिल्म के इसी गीत के साथ श्रोताओं, फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं उस्ताद अमजद अली खान से राग चंद्रकोश में सरोद वादन।

0: अमजद अली खान से राग चंद्रकोश में सरोद वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। हमारे श्रोताओं ने आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजना शुरू कर दिया है और ये पहली फरमाइश जो हमें मिली है ये है मजनू का टीला से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना MP से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीन बानो, एलिजा नायाब और लट्टू। ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान खान और कलीम खान की। ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है ये है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव। और ये अगली फरमाइश हमारे पास जवाहर दुर्ग नगर से आ रही है RC कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े की। ये अगली फरमाइश ग्राम हरूडी चांडिल झारखंड से है तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहनी महतो, दीन बंधु महतो और ये कह रहे हैं कि हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। ये अगली फरमाइश है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और SK पप्पी खुराना की। ये फरमाइश आई है गंज डुडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन हाशमी और शमशुल कमर राही की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये हैं मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश आ रही है जिला अमरोहा नई बस्ती पेते खालसा से बराहुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया आलिशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासिन अंसारी और सुदेश चौहान की। ये फरमाइश आ रही है ग्राम फांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी की। इसी गीत को जलालाबाद वेस्ट से सुनना चाहते हैं सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। ये अगली फरमाइश आ रही है ये हमारे श्रोता हैं फातिमा सोगर, सोगरा, वकार हैरत, कनीज, सकीना और हसीना दिलसाद। ये हमारे श्रोता में मैसेज करें आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से और इनके साथ है दिलशाद हुसैन। ये फरमाइश आ रही है आदाब खान, नवील खान, आरफा खान, M असलम सैफी, इल्मा खान और मास्टर जाहिद खान की। साथ में है ये हमें मैसेज करें परी महल कासगंज से। आप सब की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत चंबल की कसम फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

इसी गीत को महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से सुन रहे हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, प्रगति नाचानी, बाबू भाई और भारती।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है किशन बंजानी, नीलम, स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन महाजन और किशु की रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव। यह है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव चौलहदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम, साथ में हैं मोहम्मद आलम हाजमी, नाज पैलेस, अजमेर शरीफ से। ये अगली फरमाइश है हमारे पास, ये हैं

आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, एलम असलम सफ़ीदी, ये हैं कासगंज से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। इन्होंने ये लिखा है कि हमारा नाम पढ़ें, लेकिन कहीं पर नाम इनका दिखाई नहीं दे रहा। ये हमें लग रही है कि ये हैं, देखिए इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है और हमसे कहा है कि हमारे नाम पढ़े जाएं। प्लीज़ आप अपने नाम लिखें और मैसेज को सिर्फ एक बार ही करें, इससे कई बार हमें डिस्टर्ब हो रहा है और हमारे कई श्रोता छूट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं, अभी इनका नाम आ गया, देखिए ये हैं राजेश्वरी सागर से, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। कस्बा चिलकाना से ज़रीफ़ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी और नाजिम अंसारी इसी गीत को सुन रहे हैं। आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात, अदीब और कादिर चौधरी। ये अगली फरमाइश मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से भेज रहे हैं मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर। इसी गीत को सुन रहे हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, साथ में है नगमा नाज मंसूरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ग्राम जाखौद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है, यह है कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े, शांति निवास लेहगा रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से। हमारे ये अगले श्रोता हैं, यह हैं राही नगर गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, आबाद खान और ताबिश खान। ये फरमाइश आ रही है यलड्डू डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना और अमित खन्ना और इनके साथ में हैं इनकी अम्मी। आप सब ने सुनना चाहा है अनुराग फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम की ये फरमाइश हमारे पास आ रही है मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से। जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, शुबान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीन मुलाड़ी, इनके चाचा चाची इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव, ये हैं अनारकली बाजार जलगांव से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है सैयद मसरूर, सायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब खान की, ग्राम कुम्हारेड़ा सहारनपुर से। ये फरमाइश है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, सोएब खान, सिंघौली बरेली से हैं जिशान वाशी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, चैतन्य मस्किन, रचिता मस्किन और आशीष राजा। इसी गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है ग्राम जसवादी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागिनपुरे और वंदना नागिनपुरे। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से। ये अगली फरमाइश है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी की। ये हमारे अगले श्रोता हैं देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला, दिनेश चोपड़ा, तनु, नानू, राधिका, रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आर एस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनीषा सीमा द्वार से सभी चावला फैमिली मेंबर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता, ये हैं जालंधर शामली यूपी से राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और जिशान मंसूरी। ये हमारे पास अगली फरमाइश है कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि की। ये हमारे श्रोता हैं जो सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। आप सब ने सुनना चाहा है काला बाजार फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये हमारे श्रोता हैं जिला रंगारेड्डी एकलव्य नगर से, बिजली वेंकटेश श्यामला अयांश और इनका पूरा परिवार इसी गीत को सुनना चाहते हैं। लाल कुर्ते रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा। ये नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से हैं मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। ये भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं वर्ली नवई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं, ये हमारे श्रोता हैं बीजना मुरादाबाद से, राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनिस खान, सोफिया खान। ये हमारे श्रोता हैं साहिना परवीन, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब, मसरूर अली, खालापार, मुजफ्फरनगर से। ये हमारे श्रोता हमको मैसेज कर रहे हैं, ये हैं सिद्धार्थ गोंडे, अर्पणा, प्रणय और प्रतिभा। ये हैं राहुल नगर अमरावती से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता सैयद आलम हाशमी, पूरा हाशमी परिवार अजमेर शरीफ राजस्थान से। ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जालंधर से कार्यक्रम के इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है, मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिद रानी और रीना कौसर, मोहल्ला हलवाइन शेरकोट, जिला बिजनौर से, करणवीर हाउस भूचों केंचियां बटिंडा पंजाब से हमारे श्रोता हैं, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलवीर सिमू, एकम दवन और अभिजोत। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नलेश्वर नगर नरवले महाराष्ट्र से पी एस नुहानकर, निर्मला नुहानकर, विशाल नुहानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। कार्यक्रम में ये गीत है हमारे श्रोताओं के लिए रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनित नाचानी, मिथिल नाचानी, प्रगति नाचानी, बाबू भाई और भारती देवी, महाराणा प्रताप कॉलोनी, उदयपुर से। ये अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मनवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। आप सब ने सुनना चाहा है कटी पतंग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

इसी गीत को सुन रहे हमारे श्रोता बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन, सारांश अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। इसी गीत को जवाहरनगर दुर्ग से सुन रहे आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विन और विपुल कांबड़े। कार्यक्रम में ये फरमाइश हमें भेज रहे थे कुशेश्वर कांति गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, रुद्र गुप्ता, सिद्धि गुप्ता, ऐशबाग पीपल कॉलोनी लखनऊ से हैं रानी, मुकेश गुप्ता, रश्मि नीलम गुप्ता, कुसुम गुप्ता और रूपा इलाहाबादी। इसी गीत को सुन रहे हमारे श्रोता ये हैं फाजिलका पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवांची खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक, समस्त खेड़ा परिवार। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत आप

0: श्रोताओं, इसी गीत को सुन रहे थे हमारे श्रोता रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ये पंजाब से थे हमारे श्रोता, गांव नथाना से हरजिंदर चिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता। मेरठ केंट से इसी गीत को सुन रहे थे दिग्दर्शन और कविता गोड़। इसी गीत को सुन रहे थे हमारे श्रोता वारसी क्लब सिंघोली बरेली से जिशान वारशे, इमरान शेख और रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और सोएब खान। कार्यक्रम की ये जो अगली फरमाइश हमें भेजी थी और इसको सुन रहे थे जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो। श्रोताओं, आज समय की बाध्यता थी, सिर्फ आधे घंटे का ही प्रोग्राम था, तो इसलिए हम बहुत से कई श्रोताओं को हम शामिल नहीं कर पाए, जिसके लिए आप कल को फिर से मैसेज कीजिएगा, आपको कल के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं, अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है, इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के

0: Us came in, and with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सेवा अब यहीं पर संपन्न होती है।